फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन। विदुर नीति शतकम के अनुसार यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य कल्याणकारी कार्यों में अपना मन लगाता है, वैसे वैसे ही उसके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, यानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। झरोखा के ठीक बाद सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान भाग 254। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। इस कड़ी इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी आज सुनिएगा, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। भूले बिसरे गीत सुबह 7 बजे से, 7:30 से हम है राही प्यार के, 8:15 से त्रिवेणी प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक यह कार्यक्रम सुनेगा सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे आज के फनकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार नीरज पर, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

जैसे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग सुन सकेंगे प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से विविधा के अंतर्गत सुधीर फड़के पर चर्चा और चित्र भारती, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दिन में 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 बजे का समय है सुरीला सफर का, त्रिवेणी दोपहर 2 बजे से। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 2:30 से। मनचाहे गीत श्रोताओं के पत्रों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 3 बजे से। दोपहर 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिएगा नाटक यात्रा का अंत, लेखन डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का, निर्देशन M.S. बेक का। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्मभूषण सही परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुनिएगा, संपादन सहयोग नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने शाम 5:30 से, झरोखा सुनेंगे शाम में 6:30 से, 6:35 शाम संध्या रंजन, और शाम 7 बजे से फौजी साथियों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम विशेष जयमाला। इसके अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया की शौर्य गाथा सुन सकेंगे, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज के अंतर्गत गिटार वादन शोमू सील का। रात 8 बजे से हवा महल में सुनिएगा झलकी लालटेन की वापसी, लेखन केपी सक्सेना का, निर्देशन महेंद्र मोदी का। रात 8:15 से चित्रलोक आपके लिए यह कार्यक्रम सुन सकेंगे। रात 9 बजे से, रात 10 बजे से छाया गीत, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 से, और विविधा सुनिएगा रात 11 बजे से। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनिएगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार नीरज पर, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अभी आप सुन रहे थे झरोखे के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

उधर दशरथ पुत्रों से, चाहे वे भगवान के अवतार भी हों, लोहा लेने का निश्चय करके रावण मारीच के पास पहुंचता है और इधर श्रीराम जनक नंदिनी पर मनुष्य लीला करने का अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। जब तक रावण का विनाश न हो जाए, सीता अग्निदेव की शरण चली जाती हैं।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया कल्याण।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को आरती अंकलीकर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप तो जानते हैं कि हम संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ विवरण, कुछ चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इन्हीं रागों में संधि प्रकाश राग पूरिया कल्याण, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा है कि गायक जो है पूर्वा कल्याण और पूरिया कल्याण, इनको एक ही राग समझ के जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वा कल्याण एक अलग राग है और पूरिया कल्याण अलग है। पूर्वा कल्याण में जो ऋषभ है वो मारवा की तरह, और पूरिया कल्याण में ऋषभ जो है पूरिया की तरह लगता है। हालांकि देखा जाए तो इसके स्वर एक ही हैं, लेकिन ये जो ऋषभ का ट्रीटमेंट जो है वो दोनों रागों में अलग है। इसकी वजह से पूरिया कल्याण और पूर्वा कल्याण, ये दोनों अलग दिखते हैं। आज हम पूरिया कल्याण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूरिया कल्याण का जो जन्म है मारवा ठाट से हुआ है। आप जानते हैं कि ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। संध्याकाल में पूर्वी और भैरव ठाट जन्य पूर्वी, गौरी आदि रागों के गाने के पश्चात इस राग को गाना चाहिए। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें धैवत जो है शुद्ध लगता है। और पूरिया, पूरिया धनाश्री, श्री, लेकिन बाकी जो राग हैं उनमें धैवत कोमल है, मारवा में तो शुद्ध है। तो इन रागों को गाने के बाद, यानी पूरिया धनाश्री पूरिया, इन रागों के बाद कोमल ऋखब और शुद्ध धैवत लेके जो राग आते हैं उनकी बारी आती है। तो ये पूरिया कल्याण जो राग है संधि प्रकाश राग होने के साथ साथ एक परमेल प्रवेशक राग भी है। कोमल ऋषभ के साथ शुद्ध धैवत होने के कारण ये राग अपने पश्चात आने वाले रे ध शुद्ध वर्ग के रागों की पूर्व सूचना देता है। रे ध शुद्ध वाले रागों के पूर्व एवं रे ध कोमल वाले सायंकालीन संधि प्रकाश रागों के समय, यानी कि 4 से 7 बजे सायंकाल के अंतिम चरण में इस राग को गाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्रचार में तो लोग 11 बजे तक भी इसको गा देते हैं, बजा देते हैं, लेकिन ये उसका सही समय नहीं है। इसको 7 बजे यानी कि सायंकाल के अंतिम चरण में ही गाना चाहिए। इसका वादी स्वर है गंधार, संवादी है निषाद। पूर्यांग से पूर्या कल्याण जो जाता है हम देख चुके हैं। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

राग पूरिया कल्याण पर आधारित अब एक गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत हमारा कल का राग है श्री। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मशहूर गायिका आरती अंकली करनी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूप।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मायामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Naresh Magu. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. The NTA stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or AI-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through the DigiLocker results portal. In line with the recommendations of the National Education Policy, the CBSE had introduced two board examinations for Class 10 from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. The CBSE said that the overall pass percentage after combining the results of the main and the second board examinations of this year was 96.78%. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal addressed the India-Estonia Business Forum in Tallinn during his official visit to Estonia, calling for deeper collaboration in trade, investment, innovation and technology. The forum brought together senior government representatives, industry leaders and business delegations from both countries to explore new avenues for strengthening bilateral economic cooperation. In his address, the minister highlighted India's remarkable economic transformation over the past two decades and underscored its emergence as one of the world's fastest growing major economies.
2: The Indian economy moved from a fragile five economy 12 or 13 years ago to amongst the top five or six economies in the world. We have seen India strengthen its macroeconomic fundamentals, supporting very strong economic ratios. We have very low inflation. We have, for the last several years, been the fastest growing large economy. Our banking system is robust. We have net non-performing loans at under 1% today.
1: In Jammu and Kashmir, Sri Amarnath Yatra will remain suspended from both the Pahalgam and Baltal routes from today as a precautionary measure in view of the adverse weather forecast. The decision was taken following the India Meteorological Department's forecast of inclement weather over the next few days to ensure the safety and well-being of pilgrims. The Yatra will resume after the routes are declared safe following a comprehensive assessment of the weather conditions. Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board has also temporarily suspended the Vaishno Devi Yatra in view of the inclement weather advisory issued by the India Meteorological Department. According to an official update issued by the Shrine Board, the decision has been made as a precautionary measure to ensure the safety and well-being of pilgrims. The IMD has warned of a fresh spell of heavy rainfall over parts of Jammu and Kashmir with the possibility of flash floods, landslides and waterlogging in vulnerable areas. In sports news, England secured the bronze medal in FIFA World Cup 2026 after defeating France 6-4 in a thrilling third-place match at Miami Stadium last night. Bukayo Saka became just the second England player to score a hat-trick in a World Cup knockout match. It was the highest-scoring World Cup game since Hungary beat El Salvador 10-1 in 1982, and the 10 goals were the most in a third-place match. Today, Argentina and Spain will face each other in the finals at New York, New Jersey Stadium. The match will begin at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज भोपाल के पास ऐतिहासिक स्थल जगदीशपुर में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10,54,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 1,460 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और प्रदेश में एक बार फिर मानसून के गति पकड़ने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज राजधानी भोपाल से लगे हुए प्राचीन महल और स्मारक वाले गांव जगदीशपुर में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर कल दिनभर तैयारियां होती रहीं। भोपाल कमिश्नर कर्मवीर शर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जगदीशपुर में डॉक्टर मोहन सरकार की 8वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग हो रही है। इससे पहले जबलपुर के शक्ति भवन, दमोह के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी। वहीं लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष पर इंदौर के राजवाड़ा में, पचमढ़ी के राजभवन में राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित मंत्रिपरिषद की बैठक हो चुकी है। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर और बड़वानी जिले के जनजाति बाहुल क्षेत्र भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी में भी बैठक हो चुकी है। यह भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी कैबिनेट प्रस्तावित है। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक बड़ी योजना की घोषणा की जाएगी। ग्वालियर विकास और प्रगति के पथ पर चल रहा है और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार में हो रहा है।
1: ग्वालियर में आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी और मैं मिलकर बहुत बड़ी सौगात लेके आने वाले हैं और वो खुशखबरी ग्वालियर की जो लंबी श्रृंखला रही है विकास की, चाहे ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन जहां हम खड़े हुए हैं, एलिवेटेड रोड हो, अनेक योजनाएं 15,000 करोड़ की, ग्वालियर भिंड इटावा का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है, गडकरी साहब से मेरी चर्चा भी हो गई है, जल्द से जल्द वो भी तैयार हो जाएगा, पश्चिमी बाईपास भी है, ग्वालियर विकास और प्रगति के पथ पे चल रहा है।
0: जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल देवास फोरलेन पर फास्टैग के जरिए 3 XL बसों से अधिक टोल वसूली को अवैध ठहराया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डबल बेंच ने टोल कंपनी को करीब 11 करोड़ रुपए प्रभावित वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मेसर्स देवास भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 21 मई 2025 के आदेश को बरकरार रखा। कंपनी पर 25,000 रुपए की कास्ट भी लगाई गई, जिसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अप्रैल 2022 से जिन भी वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों से अतिरिक्त राशि वसूली गई है, उन सभी को रिफंड दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजीलॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। CBSE के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में डिंडौरी में पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया गया। वहीं झाबुआ जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के चौथे दिन जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं उमरिया SDOP PS परस्ते ने लोगों से इस अभियान में जनभागीदारी की अपील की है।
3: मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन, युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराना है। वाकई में नशा एक व्यक्ति, उसका परिवार और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार के अवैध मादक पदार्थ की क्रय विक्रय की जानकारी प्राप्त होती है, परिवहन की जानकारी प्राप्त होती है, तो संबंधित नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के इसकी जानकारी दें।
0: श्री माता

वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। श्राइन बोर्ड की आधिकारिक सूचना के अनुसार तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। श्रद्धालुओं को धैर्य रखने और श्राइन बोर्ड के आधिकारिक संचार माध्यमों से जारी सूचनाओं का पालन करने की सलाह दी गई है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस वर्ष वैष्णो देवी पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 50 लाख से अधिक हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी कल से पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से रोक दी जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अब तक अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 370,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस साल की यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। शिक्षा मंत्रालय ने भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध 3 बीएड कॉलेजों में गंभीर अनियमितताओं की टीवी जांच रिपोर्ट के बाद तत्काल कार्रवाई की है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि कुछ कॉलेज अपने घोषित स्थानों पर संचालित नहीं हो रहे थे और उनमें आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव था। हालांकि ये संस्थान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त और विनियमित है, इसलिए मंत्रालय ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु ने कल चीन के विश्व की नंबर 4 खिलाड़ी चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीत लिया। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में आज सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलो भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में यह भारत का 3रा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने डिंडौरी और उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जिला प्रशासन ने ग्राम खजराना स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 80 करोड़ रुपए मूल्य की 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण को हटाया। महानिदेशक जेल वरुण कपूर ने जिला जेल शाजापुर में निरीक्षण कर जेल की सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को देखा। खंडवा में एमएसएमई विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए बैतूल जिले से 260 यात्री आज से रवाना होंगे। मंदसौर के दलौदा में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा द्वारा किसान दिवस समारोह में किसानों को सम्मानित करने के साथ ही फलदार पौधों का वितरण किया गया। आगरमालवा जिले में विशेष 138 NH एक्ट के तहत लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 9,46,000 रुपए की चेक राशि मामलों का निराकरण किया गया। और डिंडौरी में राज्य आनंद संस्थान के मार्गदर्शन में जनजाति कार्य विभाग द्वारा अल्प विराम विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: जाता है।
1: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
2: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और एन दत्ता का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है सुधा मल्होत्रा की, फिल्म का नाम भाई बहन।

और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त की आवाज़ में 12 o'clock फिल्म के गाने के साथ। मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल और ओपिनियर की है तर्ज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है सुप्रसिद्ध गीतकार नीरज जी की पुण्यतिथि। आज हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नीरज जी की चुनिंदा रचनाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं नीरज जी के ही लिखे गीत के साथ। एसडी बर्मन की है तर्ज, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं और फिल्म का नाम शर्मीली।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में प्रेम पुजारी फिल्म का गाना। गीतकार हैं नीरज और संगीतकार हैं एसटी बर्मन।
4: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

अगला गाना हमने लिया है बनारसी ठग इस फिल्म से। उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं, नीरज के बोल और धुन इकबाल कुरैशी की।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए नीरज का लिखा और एस डी बर्मन का संगीत बद्ध क्या गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम गैम्बलर।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश कल आज और कल इस फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले और मुकेश की आवाजें नीरज की बोल और तर्ज शंकर जयकिशन की।
5: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

इस गाने के साथ ही आज का हम हैं राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आगे दीजिए नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कैच द रेन, बारिश
1: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
4: इंडियन इकोनॉमी,
5: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रही है। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
3: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुंबई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मुंबई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
5: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में टीम या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency reveals that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
8: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificially intelligence generated

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं हाउसफुल फिल्म के गाने के साथ। तरुण सागर, एलिसा मेंडोंसा और लॉय मेंडोंसा की आवाजें हैं। समीर के बोल और तर्ज शंकर एहसान लॉय की।

अगला गाना हमने लिया है प्यार इम्पॉसिबल। इस फिल्म से ऋषिका सावंत की आवाज अनविता दत्त ने लिखा इसे और संगीत से हमारा सलीम सुलेमान ने।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए लव्यापा फिल्म का शीर्षक गीत। नकश अजीज और मधुवंती बाग्शी की आवाजें, सोम के बोल और तर्ज बनाई व्हाइट नाइज कलेक्टिव्स ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुपर 30 फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है जी। जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए कैलाश खेर और साथियों की आवाजों में क्या सुपर कूल हैं हम इस फिल्म का गाना। कुमार के हैं बोल और मीत ब्रदर्स अंजन की है तर्ज।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए हर्षित सक्सेना और भूमि त्रिवेदी की आवाजों में सब कुशल मंगल फिल्म का गाना। समीर अनजान है गीतकार और संगीतकार हैं हर्षित सक्सेना।

दोस्तों, आज है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। भारत में प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को केवल बड़े उद्योगपतियों तक सीमित न रखकर किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों तथा समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचाना था। राष्ट्रीयकरण से पहले अधिकांश बैंक निजी स्वामित्व में थे और ऋण सुविधा मुख्यतः बड़े उद्योगों एवं संपन्न लोगों को ही प्राप्त होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं बहुत कम थी, जिससे किसानों और छोटे उद्यमियों को साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद देश भर में बैंक शाखाओं का तीव्र विस्तार हुआ तथा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप कृषि, लघु उद्योग, स्वरोजगार और गरीब वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध होने लगा। महिलाओं, विद्यार्थियों तथा स्वयं सहायता समूहों को भी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सहायता मिली। तो अपने आप में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाजों में राबता फिल्म का गाना सुनवा रहा हूँ। कुमार के हैं बोल और सोहराबुद्दीन की तर्ज़।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में भैया जी सुपरहिट इस फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार हैं अमजद नदीम।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान और उस्मान मीर की आवाज़ों में दुकान फिल्म का गाना। सिद्धार्थ गरिमा थे गीतकार और संगीतकार थे श्रेयस पुराणिक। अभी आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से। आवाज़ हैं शशि और डीजे खुशी की गगन आहुजा के बोल और शशि डीजे खुशी की तर्ज़।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: श्रोताओं नमस्कार।
1: आप यहां आए
0: हम तो आए हैं यहाँ एक ऐसे फनकार की बातें लेकर जिनसे कई बार हम खुद ही ये कहना चाहते हैं।
1: तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: न सिर्फ हमारे मन पर चढ़ा है उनका रंग बल्कि हमारे जीवन में है उनकी गहरी पैठ। तभी तो जागते सोते उन्हीं के ख्यालों से बंधे रहते हैं हम।

0: भूलने वाले कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज।
1: ओ नीरज नैना आजरा आजरा।
0: और उनके गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है कि जितना सुनो मन यही कहता है।

गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम उनके उपनाम नीरज से पहचानते हैं। वही नीरज जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीतों के जरिए एक नई पहचान कायम की, जिन्होंने पहले तो इस फिल्मी दुनिया में आने से इनकार किया, लेकिन जब कदम रखा तो उनके हर गीत ने लोगों के मन को छुआ। भले फिल्म ना चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

0: नई उम्र की नई फसल फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी निराला है। बात 1960 की है। मुंबई में नीरज के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था और इसके लिए उनका 2-2.5 घंटों का एकल काव्य पाठ रखा गया था। यहां कई नामी गिरामी व्यक्ति भी दर्शक बनकर आए थे और उनमें ही शामिल थे आर चंद्रा, जिन्होंने नीरज से उनके फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की। नीरज ने कहा कि वो मुंबई में नहीं रुक सकते। उनकी लिखी सैकड़ों कविताएं हैं, जो भी पसंद आए वो ले सकते हैं। इस तरह आर चंद्रा ने अपनी फिल्म के लिए करीब 5 से 6 कविताएं चुनी और उनके साथ फिल्म बनाई। फिल्म में शामिल सभी गीत सुपरहिट रहे, खास तौर से ये गीत।
1: सपन झरे फूल से

पूरी दुनिया के चकाचौंध किसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ऐसा कहने के पीछे नीरज का वो व्यक्तित्व था जो संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन हुआ था। नीरज और उनके गीतों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उस जीवन को जानना आवश्यक है जब वो एक कवि, लेखक, शिक्षक हुआ करते थे, गीतकार नहीं, बल्कि उसके भी पहले से उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम गोपाल दास नीरज या नीरज के नाम से पहचानते हैं, मात्र 6 बरस के थे कि पिता चल बसे। पढ़ाई के लिए बुआ के घर भेजा गया। बुआ के घर पढ़ाई करते हुए काफी अच्छे अंकों से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे-छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।

नीरज का रुझान लेखन की ओर तो था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कई छोटे-छोटे काम किया करते थे, जैसे टाइपिंग करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दीवारों पर इश्तहार छापना और भी न जाने क्या-क्या। वो इन कामों के साथ भी अपना लेखन जारी रखते और कवि सम्मेलनों में जाना भी। इसी तरह के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना कमाते हैं। नीरज उस समय बतौर टाइपिस्ट 62 रुपए महीना कमा रहे थे और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वो उन्हें हिंदी विभाग में 120 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकते हैं। वो व्यक्ति थे अपने जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी। नीरज उनकी बात मान गए।

दिल्ली पहुंचे नीरज का काम था सरकारी नीतियों को कविता के रूप में ढालकर लोगों तक पहुंचाना। ये बात है 1940 की। हालांकि काम कुछ बुरा नहीं था, लेकिन नीरज का जमीर उन्हें कचोट रहा था कि वो देशवासियों के लिए कुछ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं। आखिर जब वो तब के कलकत्ता पहुंचे और अकाल से जूझते लोगों की स्थिति देखी तो सरकारी नीतियों के प्रचार वाला गीत छोड़कर मंच पर एक क्रांति गीत सुनाया, मैं विद्रोही हूं, और उसके बाद नौकरी पर दिल्ली लौटकर कभी नहीं गए। इस कविता और नीरज के विचार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नीरज के मन में देश प्रेम की भावना गहरे बैठी हुई थी। 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और जेल भी गए।

नीरज के लिखे जितने भी फिल्मी गीत हम देखते हैं उनमें कुछ अलग ही रंगत नजर आती है। कई ऐसे शब्द दिखते हैं जो फिल्मी गीतों में उसके पहले आम नहीं रहे। इससे जुड़ा एक किस्सा नीरज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत के लिए सचिन देव बर्मन ने नीरज से कहा कि उन्हें गर्भवती महिला की खुशी जाहिर करने वाला एक गीत चाहिए, नीरज ने बताया कि उनका गीत देखकर सचिन देव बर्मन की आंखों में चमक आ गई थी। गीत ही कुछ ऐसा था।

0: तेरे मेरे सपने। इस फिल्म में देव आनंद और मुमताज पर फिल्माया ये गीत नीरज की कलम से निकले अमर गीतों में से एक है। देव आनंद ही थे जिन्होंने नीरज को सचिन देव बर्मन तक पहुंचाया। देव आनंद ने भी नीरज को उनके कवि सम्मेलन में सुना था। उनकी भाषा से प्रभावित होकर भविष्य में अपनी फिल्म में गीतकार बनने की बात उन्होंने कही थी। और जब नीरज को पता चला कि देव आनंद फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने वादे की याद दिलाते हुए एक खत देव आनंद को भेज दिया।
1: फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती।
0: नीरज की भाव भरी पाती देव आनंद तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और नीरज को मुंबई बुला लिए। नीरज से मुंबई में मिलते ही देव आनंद ने उनके हाथों में 1000 रुपए रख दिए और कहा कि अगले ही दिन फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन से मुलाकात करवाएंगे। शायद नीरज की परीक्षा लेने के लिए सचिन देव बर्मन ने एक धुन के साथ नीरज को एक शब्द दिया और कहा कि गीत इसी शब्द से शुरू होना चाहिए और गीत में ऐसे शब्द ना आए जो आम तौर पर इस तरह के गीतों में होते हैं। देव आनंद ने नीरज को सलाह दी कि वो पहले गीत लिखकर उन्हें दिखा दें फिर ही आगे भेजें। नीरज की कलम से रातों रात ही गीत लिखकर तैयार हो गया। पढ़ते ही न सिर्फ देव आनंद झूम उठे बल्कि सचिन देव बर्मन ने भी नीरज को गले से लगा लिया। फिल्म थी प्रेम पुजारी और गीत का पहला शब्द
2: रंगीला।

इसके बाद अगले 5 दिनों में ही प्रेम पुजारी के बाकी गीत लिखकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। सारे गीत हिट रहे और आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नीरज ने कविता लिखना और पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था जब वो मात्र 14 साल के थे। बचपन के संघर्ष भरे अनुभवों ने उनकी कलम को समृद्ध किया। नीरज मानते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से काफी प्रभावित रहे और उनको पढ़ने से उन्हें एक नई दिशा मिली। अपनी पहली पुस्तक भी नीरज ने हरिवंश राय बच्चन को समर्पित की। नीरज ने छोटी उम्र से ही कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी रचनाएं सुनाना शुरू कर दिया था।

नीरज ने फिल्मी गीतों से ज्यादा कविताओं, दोहे आदि रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया है। वो जीवन के अंतिम दिनों तक कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहे। उन्हें कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने नहीं घेरा और इस बारे में पूछने पर उनका कहना था कि वो उचित मात्रा में भोजन करते हैं और अपनी कलम के माध्यम से अपने मन के उद्गार बाहर निकालते रहते हैं, जिससे मन भी हल्का रहता है। नीरज को जानने वाले बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज रही। उन्हें अपनी सारी कविताएं तो कंठस्थ थी ही, इसके अलावा तकरीबन 200 फोन नंबर भी याद थे। एक लंबे समय तक वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी अध्यापक के पद पर बने रहे। इसी के साथ वो फिल्मों में गीत लिखने भी आते। वो लोगों की सहायता करने में आगे रहते और मानवता की बातें अपने गीतों के जरिए भी पहुंचाते।

नीरज ने अपने फिल्मी करियर में सचिन देव बर्मन के अलावा शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। नीरज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार शंकर जयकिशन जोड़ी ने शंकर ने उन्हें बताया कि उनका लिखा गीत फिल्म में नहीं लिया जा सकेगा। इस बात पर फिल्म के निर्माता राजेंद्र भाटिया ने नीरज को प्रेरित किया कि वो कोई ऐसा गीत लिखें जिसे नकारना असंभव हो। नीरज रातों रात एक ऐसा गीत लिखकर लाए जिसे देखकर शंकर जयकिशन झूम उठे। इस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। निर्माता राजेंद्र भाटिया ने खुश होकर नीरज को अपनी कार ही गिफ्ट कर दी। ये फिल्म थी कन्यादान और वो गीत था ये।

0: कॉलिंस ने तकरीबन 130 फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे गीतों की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र ना करें। इस फिल्म के लिए लिखे नीरज के गीत इस फिल्म की तरह ही अमर हैं। नीरज इन गीतों को वो शब्द देते हैं जो किरदार के भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही नीरज की खासियत रही है कि वो हर उस बात को अपनी कलम से कहते हैं जिसकी हुक उस वक्त दर्शकों के मन में उठ रही होती है।
1: ये भार

0: ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: मेरा नाम जो करके दोनों गीतों में नीरज गहरा जीवन दर्शन इतनी सादगी से परोसते हैं कि बोझिल हुए बिना जिंदगी का मर्म समझ आता है।

नीरज ने श्रृंगार के गीत भी लिखे तो देशभक्ति के भी, उन्होंने दर्शन भी लिखा तो भक्ति के गीत भी। मजाहिया गीतों में भी नीरज ने कोई कमी नहीं रखी।

स्वभाव कोई भी हूं, लेकिन नीरज के गीतों की खासियत थी उनकी सरल भाषा। वो जटिल से जटिल बात भी आम जन को समझाने वाली भाषा अपने पास रखते थे।

नीरज एक अनोखे इंसान रहे। जहां एक बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्धि मिलने के बाद कोई भी वापस नहीं जाना चाहता, वहीं अपनी प्रसिद्धि के चरम पर ही नीरज वापस लौट गए। कारण था लोगों का बदलता व्यवहार। उन्हें यह एहसास हुआ कि अब इंडस्ट्री में वो लोग नहीं हैं जिन्हें शब्दों का वास्तविक सम्मान है। उन्हें लगातार कला में पूंजीवाद का समावेश पसंद नहीं आ रहा था।

हालांकि वो अपने चाहने वालों से जुड़े रहे और कवि सम्मेलनों में लगातार शिरकत करते रहे। देवानंद से भी उनका खासा प्रेम बना रहा और उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट में भी नीरज ने ही गीत लिखे।

नीरज का इस तरह से फिल्मी दुनिया से लौटना भी शायद उनके ही इस विचार का आईना है, जहां वो लिखते हैं, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा।

और साल 2007 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की उम्र में नीरज ने संसार को विदा कहा और अपने पीछे अपनी एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ गए। उनके गीतों, कविताओं और रचनाओं के माध्यम से वो आज भी चाहने वालों के बीच अमर हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था कलम के जादूगर, लेखक, कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। झाबुआ जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हजारों हितग्राहियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों सिंगल क्लिक के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की, जिसके तहत झाबुआ जिले के 23,000 से अधिक वृद्धजन, दिव्यांगजन और कल्याणी पेंशन के हितग्राहियों के खातों में लगभग 1,38,00,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर बीते दिनों झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया गया। कलाकारों ने भीली भाषा में गीत, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। नागरिकों ने नशा मुक्ति की शपथ लेकर स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया। झाबुआ जिले में आम नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 17 जुलाई को आयोजित विशेष जनसुनवाई में जिले की सभी तहसीलों से कुल 220 आवेदन प्राप्त हुए। झाबुआ जिले के पेटलावद में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लगभग 2,75,00,000 रुपए की लागत से निर्मित 50 सीटर वीरांगना रानी दुर्गावती अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री ने लगभग 8,00,00,000 रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण और जनहितकारी कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। वर्षा ऋतु के दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए झाबुआ जिले में स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान जारी है। इस वर्ष जनवरी से जून तक जिले में 1,06,000 से अधिक घरों और लगभग 4,00,000 पानी संग्रहित करने के पात्रों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि सप्ताह में एक दिन अपने घर और आसपास पानी जमा होने वाले सभी स्थानों की जांच अवश्य करें। झाबुआ जिले में शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसक ने मेघनगर और थानला विकासखंड के कई विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं का संचालन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था और विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। झाबुआ जिले में शिशुओं और छोटे बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत हो गई है। 31 अगस्त तक इस अभियान के दौरान एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम घर घर जाकर जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। झाबुआ जिले ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जून 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में जिले को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च स्थान दिया गया है। झाबुआ में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी की परंपरा पर आधारित इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। झाबुआ में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बीते दिन उत्साह के साथ मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। वहीं कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने योग को स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन की आधारशिला बताया। झाबुआ जिले के पेटलावद में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में भी झाबुआ जिले ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले ने 102.8% कवरेज के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 28 से 30 जून तक चले इस अभियान में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 2,19,550 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों जिले में पदस्थापित 20 नवनियुक्त मेडिकल ऑफिसर से संवाद किया। झाबुआ में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन जनभागीदारी और जल संरक्षण के संकल्प के साथ हुआ। आजीविका भवन में बीते दिनों आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। झाबुआ जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: झाबुआ जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था हरीश यादव का और वाचन किया था अभिषेक कटियार ने।
1: उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं।
2: एक मार्केटिंग बहुत मार्केटिंग जरूरी है के लिए, आप तक जी, पहुंचने जी। के लिए। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
1: मुझे अलग अलग तरह का मूड के हिसाब से मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना
2: जी।
1: बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे हैं,
2: लेकिन लाउड सिनेमा नहीं,
1: बिल्कुल नहीं। और आप और हमारे इर्द गिर्द की कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो हैं हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं, वो मुझे पसंद है।
2: चलिए तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर जरूर बात को आगे बढ़ाते हैं।
1: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे,
2: आइए सुनते हैं, बहुत ही सुंदर गीत।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज़्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज़्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है, वो चूंकि इतिहास है तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा
0: जी, जी।
1: तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह के जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं।
0: जी, तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी।

0: और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
1: क्या लगता है आपको इस तरह का, जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
0: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको उकेरने में मुझे लगता है कि मैं काफ़ी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना, उस कैरेक्टर को, आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ
1: जी
0: और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे, उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो
1: जी
0: पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉल्स्टॉय है ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद्र, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
1: जी जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है। स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को
0: जी
1: जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा, तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही हैं तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
0: जी कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुँच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएँ हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएँ हैं, अलग अलग समस्याएँ, ढेर सारी समस्याएँ, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ, कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं
1: नहीं
0: हूं,
1: हूं।
0: मैं उसके विरोध में नहीं हूं,
1: जी जी
0: क्योंकि संसार दोनों से चलता
1: जी
0: है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये, पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है, तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मोजी बोलते थे, वो
1: जी
0: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मोजी, आप ये कर दीजिए, आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी

0: आपकी लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: नहीं देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत ज़रूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का, या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
1: जी,
0: है,
1: दोनों के लिए गलत है। तो
0: है।
1: स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो,
0: फ्री
1: ये
0: हो।
1: होना
0: वहां
1: चाहिए।
0: उसे स्वतंत्रता
1: जी
0: मिलनी चाहिए,
1: जी
0: अपने निर्णयों को लेना सीखे कि जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत हैं? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है, या वहां कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही है?
1: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है। अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है, या ये कर रही है, वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके? मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूँ। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज़, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीज़ें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट करके, और अपने हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब। तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पुरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ये तो पुरी साहब करेंगे। पुरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का ऐड है? बोले सिगरेट का। तो पुरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं, पुरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पुरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पुरी साहब, अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं, और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो, या हीरोइन मानता है। आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो हैं आपने स्टेक पे लगा दी हैं
0: जी बिल्कुल
1: तो पुरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए
0: जी आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती
1: जी
0: जी बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है क्या विज्ञापन दे रहा है क्या संदेश दे रहा है उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है सीमा जी बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए
1: जी मेरी पसंद का गीत है
2: जाने वालों जरा

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: शुरुआती, बहुत सारी फिल्में हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद हैं?
1: नायिकाओं में मुझे वो बेचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं, लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी।
0: मधुबाला
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के

0: देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहां कॉमेडी कहां सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर्स थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज़्यादा अच्छा हो।
1: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन उनकी खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
0: जी जी,
1: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए घातक।
0: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी है, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
1: बहुत सुंदर
0: जी,
1: आंखें बोलती थी उनके
0: जी,
1: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका।
0: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं। वो निर्देशक के कलाकार होते हैं, निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
0: निर्देशक
1: है,
0: कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
1: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
0: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अन्नू भैया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
1: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
0: बहुत अच्छी,
1: बहुत ही संचिता कलाकार है
0: जी, और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीज़ों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से ही पूछते हैं,
1: जी,
0: वो गांव में तो नहीं रहे हुए होते हैं, तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम, बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई एक कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
1: स्टार्टिश कलाकार हैं, एक अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, में लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं,
1: बहुत सुंदर गाना है। चलिए तो सुनते हैं यही गीत।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ
0: बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है
0: अब
1: अब तलक।
0: तलक।
1: जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पूरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड। तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था। आपको एक कोना चाहिए जहाँ आप रो सकें, जहाँ आप कथारसिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि

0: या मैं ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको, फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
1: जी
0: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे, थिएटर कंपनी के बाबूजी की जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो। तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं वो, उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता के संतान होके आज देखिए, जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई,
1: जी
0: भुखमरी आ गई है
1: जी
0: ना,
1: बिल्कुल
0: सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया, और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब, और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक
0: जी
1: किताब रही ये
0: जी
1: यूं गुजरी अब तलक। और उसमें मुझे लगता है कि हमने
0: साहित्य
1: आपको
0: तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10
1: में
0: बुक में लिया
1: शामिल किया,
0: जी।
1: और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी आगे भी आप यूं लिखती रहें, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही हैं। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या-क्या हैं बस ये जानना चाहते हैं
1: जी वो फिल्म बना रही हूं दो सीरियल का है वो कर रही हूं एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जी एक जगह है जहां पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है और नदी कैसे पार करनी पड़ती है टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूं अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूं कि मैं जितना भी काम करूं मेरी जो महिलाएं हैं मैं चूंकि स्त्री हूं तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूं
0: जी बिल्कुल बिल्कुल तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर बतौर निर्देशक बतौर एक्टर
1: देखिए कोई भी विधा जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे मैं इसके खिलाफ हूँ एक तो जो कलाकार आता है जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है
0: जी
1: ठीक है आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे पहली बार जिसने इसी को पढ़ा है जो यही कर रहा है और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे
0: हाँ,
1: नहीं
0: तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है
1: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते ग्लैमर और पैसा तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होके आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे लेकिन आप कलाकार हैं आप पढ़ते हैं आपने सिनेमा पढ़ा होता है थिएटर पढ़ा होता है आपने लिटरेचर पढ़ा होता है म्यूजिक पढ़ा होता है ये सारी चीजें जब आपने की होती हैं थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है जैसे एक डॉक्टर बिना MBBS किए डॉक्टर हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है इसी तरह कलाकार को कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है तभी जाके आप कुछ बनेंगे
0: बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खास तौर से दिया है जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद को तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
1: नहीं विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा
0: जी तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस कार्यक्रम का
1: जी एक गाना मजरू साहब का है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से LP का म्यूजिक है न जा अब कहीं न जा
0: दिल के सिवा
1: दिल के सिवा
0: क्या बात है न जा

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्ते। विविधा के एक और बेहतरीन और नायाब अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में मैं हूं अमरकांत
1: और मैं हूं मनीषा जैन।
0: आप सभी को
1: नमस्कार।
0: तो मनीषा जी, आज जैसे मैंने अभी कहा कि बेहतरीन और नायाब, ये बोलने की जरूरत रहती तो नहीं है, लेकिन अब रस्म तो अदा करनी पड़ती है।
1: और ये रस्म आपने बखूबी अदा की अमर जी क्योंकि आज वाकई बहुत नायाब और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हाथ लगी है जिसका खुलासा मैं इस वक्त नहीं करूंगी, बाद में करती हूँ। और हमारे इस अंक की आज जो शोभा है वो है एक महान गायक और संगीतकार जिनके बारे में हम पहले बात करेंगे। उनका नाम मराठी संगीत से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, बहुत सम्मान से, बहुत आदर से जिनका नाम लिया जाता है। हम आज उनकी बात कर रहे हैं सबसे पहले, जी हाँ श्रोताओं, सुधीर फड़के।

0: सुधीर फड़के जी का नाम, जैसे आपने कहा कि मराठी संगीत के लिए बहुत इज्जत से लेते हैं, उन्होंने बहुत बहुत काम किया मराठी संगीत के लिए, लेकिन हिंदी में भी जो काम उन्होंने किया, चाहे वो कम ही किया हो काम, लेकिन उनकी हिंदी फिल्मों की रचनाएं, अगर एक ही रचना का मैं नाम ले लूं तो, अब जैसे भाभी की चूड़ियां,
1: क्या बात है,
0: अब इस फिल्म का नाम ले ले और ज्योति कलश छलके इस गाने को अगर हम सिर्फ यूं ही बोल दें, मतलब पूरा गाना सुनने की जरूरत नहीं है
1: जी,
0: तो भी वो पूरा शरीर झनकृत हो जाता है,
1: बिल्कुल रोमांचित हो जाता है, और वो एक स्वर्णिम उपहार है जैसे सुधीर फड़के जी का हिंदी सिनेमा को दिया गया, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना और वैसा ही दिव्य स्वर लता जी का।
0: अब यहाँ एक और बात मैं करूंगा इससे पहले कि आप अपने पिटारे में से कोई नायाब सी चीज निकाल कर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं, सुधीर फड़के साहब की ये कला का ही एक बड़ा जादू कहना चाहिए, चमत्कार कहना चाहिए, कि जहां एक तरफ सुधीर फड़के साहब ज्योति कलश छलके जैसी रचना बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से बना देते हैं खुश है जमाना आज पहली तारीख है,
1: कमर जलालाबादी की वो रचना,
0: आप बताइए मुझे कितना कंट्रास्ट है।
1: हाँ?
0: आप कोई कह सकता है कि ये ज्योति कलश छलके जिसने गढ़ा है, जिसने हाँ? रचा है, और किशोर कुमार जैसे महान कलाकार,
1: क्या बात,
0: मतलब
1: है?
0: ये बताने का कारण सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि एक कलाकार की रेंज क्या है, देखिए आप वो कहां से कहां तक, जमीन से आसमां तक सब कुछ एक करने की हिम्मत रखता, मादा रखता,
1: बिल्कुल, और ऐसा ही विस्तृत फलक, ऐसा ही बड़ा कैनवास सुधीर फड़के जी का। आज हम याद करें सुधीर फड़के जी को, 25 जुलाई 1919 को इस महान कलाकार का जन्म हुआ और 29 जुलाई 2002 को हम सबसे ये विदा ले गए। उनके बारे में हम क्या कहें, उनकी रचनाओं के बारे में हम आपसे क्या कहें, बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इनका जो मूल नाम था ना श्रोताओं, वो था राम फड़के, और HMV कंपनी के लिए जब वो संगीत दे रहे थे, गीत बना रहे थे, तब उन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया था। जन्म हुआ था कोल्हापुर में, और इन्होंने संगीत की जो शिक्षा ली थी, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो वामन राव पाध्य साहब से कोल्हापुर में ही ली थी, और बाद में उन्होंने HMV से करियर की शुरुआत की 1941 में, और प्रभात फिल्म कंपनी से वे जुड़ गए थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर 1946 में। तो इस तरह से सुधीर फड़के जी ने एक तरह से संगीत में अपना जो योगदान दिया उसको तो कोई भुला नहीं सकता, आज तक उनके संगीत को लेकर हम सब बहुत रोमांचित होते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण रचना अमर जी उनकी जो रही है, जिसके बारे में किसी भी संगीत मर्मज्ञ से बात कीजिए तो वो जरूर बात करेगा, और वो है गीत रामायण।
0: जी मनीषा जी,
1: जी
0: मैं आपको ये बता दूं कि गीत रामायण गदी माड़गुड़कर, इनकी जो रचना है, ये बहुत बड़े कवि मराठी साहित्य में
1: जी,
0: बड़े सम्मानित कवि हैं, इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, और इनकी रचना को इन्होंने स्वरबद्ध किया, और फड़के साहब और गदी माड़गुड़कर साहब की जो ये जुगलबंदी हुई
1: जी, जी, जी,
0: वो ऐसा एक सुरीला इतिहास है जो सदा सदा के लिए अमर हो गया है, और जब तक संगीत रहेगा तब तक ये गीत रामायण जरूर याद की जाएगी।
1: और हम ये भी बताना चाहेंगे कि 1955 से लेकर 1956 लगभग एक साल तक आकाशवाणी से इस गीत रामायण का प्रसारण हुआ था, और उसके बाद इसने, जैसा आपने कहा ना, कि इतिहास ही रचा है
0: जी।
1: और आज तक हम इसे याद करते हैं, इसे सुनते भी हैं, हमारे कई श्रोता इस वक्त इस गीत रामायण को याद करेंगे। मुझे लगता है हमारा दायित्व बनता है अमर जी कि गीत रामायण की एक झलक हम थोड़ी सी आज के कार्यक्रम में सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मनीषा जी, ये गीत रामायण सुनने के बाद फिर एक ट्रांस में जैसे चले जाते हैं ना, उस तरह से कुछ फील हो रहा है।
1: जी हाँ
0: फिर वो पुराना दौर, वो पुराना समय, वो पुराने रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो याद आ जाती हैं जब भी कभी इस तरह की रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ एक बात और सुधीर फड़के जी के बारे में बता दें कि
1: जी
0: सुधीर फड़के जी ने न सिर्फ संगीत को रचा बल्कि देश के प्रति,
1: जी
0: आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है उनके प्रति भी उनके लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने वीर सावरकर पे
1: एक
0: एक
1: फिल्म बनाई
0: फिल्म बनाई।
1: जी
0: और इस फिल्म के पीछे एक और बात है कि ये फिल्म मनीषा जी चंदे से बनी
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: इस फिल्म के निर्माण के लिए लोगों से चंदा लिया गया और इस तरह से ये फिल्म बनी। और ये फिल्म सुधीर फड़के जी ने समर्पित किए उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो एक कलाकार भी किस तरह से अपना योगदान, अपना सरोकार जाहिर करता है समाज के प्रति, देश के प्रति, ये बताया सुधीर फड़के जी ने।
1: जी हाँ और इसी महान कलाकार की रिकॉर्डिंग आज हमारे पास है, श्रोताओं उनकी आवाज है। और हालांकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये अवधि इसकी कम है, लेकिन आपको आनंद आएगा अवश्य उनके आवाज को सुनकर, उनके द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम को सुनकर। आइए सुनते हैं अमर जी श्रोताओं के साथ सुधीर फड़के जी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: सुनने वाले भाई बहनों को नमस्ते। आप तो जानते ही हैं कि मेरा कार्यक्षेत्र मुख्यतः संगीत है। इसी माध्यम के द्वारा लगभग 30 वर्ष से मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूं। परंतु एक बात आपको मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने संगीत रचना करते समय केवल मनोरंजन ही करना नहीं चाहा। मनोरंजन के साथ साथ और भी एक बात सदा मेरे मन में रही है, एक आदर्श मेरे मन में रहा है। आप पूछेंगे वह क्या है, तो मित्रों मेरा आदर्श है मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान, उसकी सभ्यता और उस सभ्यता से जन्म ली हुई कला।

मैं अपने देश की अन्य कलाओं को तो नहीं अपना सका, किंतु संगीत की सेवा मैंने अवश्य की है। संगीत का केवल व्यापार करने से अधिक संगीत के माध्यम का उपयोग करके अपनी संस्कृति के अच्छे आदर्श आपके सामने रखने का प्रयत्न मैंने अवश्य किया है। इसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने प्रयत्न अवश्य किया है, जिसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आवाज आपकी मनचाही गायिका लता जी की है। कविवर पंडित नरेंद्र शर्मा जी के इस गीत में जिस शुद्ध भारतीय संस्कृति का चित्र उभर कर सामने आता है, उसके लिए आवश्यक बात यह थी कि उसको किसी शुद्ध राग में ही संगीतबद्ध किया जाए। उचित अवसर की यह बात मैंने इसलिए कही कि फिल्मों में गीत बनाए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, इसीलिए हम लोगों को सिचुएशन का गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। लेकिन मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कथाकार, कवि और निर्देशक की कल्पना पूर्णतया साकार हो और उस सिचुएशन को पूर्णतया न्याय मिले, इसी प्रकार की स्वर रचना करने का प्रयत्न मैंने अपने जीवन भर किया है।

दोस्तों, इस समय यह अवश्य कहूंगा कि फिल्मों में संगीत देने के लिए मेरी दृष्टि से शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक है। कारण शास्त्रीय संगीत ही वह संगीत है जो स्वरों की असली पहचान कराता है, लय का ज्ञान देता है। जिस प्रकार बिना नींव के इमारत टिक नहीं सकती, उसी प्रकार बिना स्वर ज्ञान के सही संगीत निर्देशन नहीं हो सकता। इस विषय में मेरे गुरु स्वर्गीय गायनाचार्य पंडित वामनराव जी पाध्याय का मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने ही मुझे स्वरों का ज्ञान दिया। जो कुछ भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यह सब उन्हीं की कृपा है। साथियों,

बात ही बात में मुझे अपने गुरु याद आ गए। गुरु और शिष्य में कितना प्रेम होता है इसका अनुमान वही लगा सकता है जो कभी किसी का शिष्य बना हो। इन्हीं शब्दों के साथ राग जय जयवंती पर आधारित मेरी एक पुरानी फिल्म मालती माधव का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मेरे पुराने मित्र पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा और गाया है लता जी ने।

मित्रों, इस गीत को सुनने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की मिठास बरसों कम नहीं होती और मन उन्हें बार बार सुनना चाहता है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो संगीत हमारे देश के जनजीवन में समाया हुआ है वह लोक संगीत है। लोकगीत सीधे आम जनता की भावना से जन्म लेता है। यही कारण है कि समूचे भारत की पंचरंगी सभ्यता से बहुरंगी लोकगीतों ने जन्म लिया है। मैंने भी जहां अवसर पाया लोकगीत का रंग जमाया। बात लोकगीतों की चल रही है तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि लोकगीत किसी विशेष अवसर या मौसम से संबंधित होते हैं और उसी समय गाए जाते हैं। जैसे नाव चलाते हुए मांझी गीत गाते हैं, झूला झूलती हुई लड़कियां सावन के गीत गाती हैं, और इन्हीं अवसरों में एक अवसर ऐसा भी होता है जब लड़का दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार ससुर के घर बारात लेकर पहुंचता है। उस समय दूल्हा की बहनें या भाभियां गीत गाती हैं। आपने लड़की की विदाई का गीत फिल्मों में बहुत सुना होगा, परंतु मैं आपको दूल्हा की तरफ से गाए जाने वाले गीत को सुनवा रहा हूँ। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और गा रही है आशा भोसले और उनके साथी।

0: ये आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में स्मृति शेष में नमन, फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं, जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बना

वापस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिका

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन बिचार दे।
4: क्या खड़ा हो गया यार, बाबू यहाँ से।
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद निहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पेस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
6: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने चेरी को इतना सेल्फिश बना दिया है। पन खुदाए सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
7: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
7: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
8: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो पता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
9: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहाँ भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही।
10: நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எந்திரிச்சேன்.
11: நினைச்சேன் பணத்தை காணாமேன்னு நினைச்சேன்.
10: ஐயோ சத்தியமா எனக்கும் தெரியாது. டேய்
12: என்னம்மா
11: இந்த அறையாத்து பாத்தியாடா, பணத்தை எண்ணி வச்சிருந்தாடா. 30 ரூபாய் காணாமடா, 30 ரூபாய் காணாம்.
10: ஏடா அழகப்பா, நீ தான போட்டி கோல இருந்து பணத்தை எடுத்த.
12: ஏப்பா விளையாடுறியா? நான் காலையில போனோம், இப்பதான் வர்றேன்.
0: अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्नाबीडू और इधू नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थीं। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भाग्यराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

कि भागीराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में ना अच्छी लाइटिंग होती है ना आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बीताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रुज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौट।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद यह पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

0: ने आज प्रदेश के सात जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य तीन जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म प्रेम पुजारी का यह गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज की बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: ती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बनारसी ठग फिल्म का गीत आपने सुना। उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी। नीरज की रचना थी इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओ, सिने जगत के जाने माने गीतकार नीरज की आज पुण्यतिथि है और आज इन्हीं के लिखे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में।

कल आज और कल इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ें शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

जयदेव का स्वर्ग दिखिया ये गीत आपने सुना, नीरज का लिखा, आशा भोसले और सखियों की आवाजें थी। रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत के पहले श्रोताओ नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। मुकेश की आवाज थी, नीरज के बोल थे, रोशन।

0: लिखे जो खत तुझे वो
1: शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर इस गाया मोहम्मद रफी ने। कन्यादान फिल्म का गीत आपने सुना, नीरज का लिखा।

0: गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नीरज के लिखे आज के सभी गीत थे और सचिन देव बर्मन की तर्ज थी इस गीत में। श्रोताओं, यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: होठों

0: होती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, थोड़ा मौसम का तकाजा है, थोड़ा थोड़ा सा प्यार, थोड़ी खुशियाँ, तो सुरों सरगम की बहार लिए और तमाम गीतों को लिए आ चुका है आपकी रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे उन श्रोताओं के लिए बता दें जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं या जो हमारे नए श्रोता हैं, उन्हें लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़ सकते हैं इस पते पर हमारे कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। आज की जो इबारत है श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जो फेसबुक पर देखा है, जिन्होंने उन्होंने तमाम सारे कमेंट्स भी लिखे हैं, तो ये इबारत अपने रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर पढ़ देते हैं। कायनात की सुंदर तस्वीर किसी शहंशाह के ताज में जड़े नगीनों से कम नहीं, इन्हें देखते आंखें थकती नहीं। मुझे याद है वो जीवन से भरी आंखें जो तस्वीर में भी बातें करती थी, वो जुल्फ झूमती हवाओं सी जो प्यार में अरमानों को जगाती है, प्यार बनकर दिल के साहिल से टकराती है। मोहब्बत के मोती थे यादों के कैनवास पर, लेकिन वो बात तस्वीर में कहां जो आपकी बातों में है। तुम्हारे बहुत सारे श्रोताओं ने तस्वीर के बारे में लिखा है। जी हाँ, तस्वीरें जो कभी हाथ से बनाई गईं, कभी दिल में उकेरी गईं, कभी प्रकृति के सुंदर नजारों में नजर आईं, कभी जिंदगी में रंग भरती हैं तो कभी सपनों में चित्र बनकर उभरती हैं। ये तस्वीरें आपको कितना प्रभावित करती हैं श्रोताओ, तस्वीरों से जुड़ी यादें आपको साझा करनी है आज के इस कार्यक्रम में। इन तस्वीरों में कुछ फूल भी रंग भरते हैं, कुछ नजारे भी रंग भरते हैं, कुछ सितारे भी रंग भरते हैं,

एक तस्वीर इस गीत में नजर आती है श्रोताओं, यानी कह सकते हैं कि अभिनेत्री की तस्वीर है। और ये कौन सी अभिनेत्री है ये अगर आपने फिल्म देखी है तो बता सकते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत था, किशोर कुमार की आवाज़ में, नीरज के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। और हमने गीतकार का नाम पूछा था, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक इसका जवाब भी लिख भेजा है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें ठहरे हुए समय फ्रोजन टाइम को परिभाषित किया करती हैं, जो कि बीते हुए लम्हों को उसी रूप में संजोए रखती हैं जैसे उन पलों को पुराने समय में हमने जिया। जब यादें कुछ कुछ धुंधलाने लगती हैं तब तस्वीरें ही हमें यादों के उन्हीं गलियारों में पहुंचा देती हैं जहां यहां तस्वीरें केवल इन्होंने इनका ये जो मैसेज है वो कहीं इधर उधर हो गया है श्रोताओं। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर ये मिल जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये इबारत यादों के कैनवास पर मोहब्बत की एक ऐसी नज्म है जहां तारीफ से शुरू हुआ सफर सादगी और हकीकत के दीदार पर आकर मुकम्मल होता है। इसमें मोहब्बत की शिद्दत भी है और उर्दू हिंदी शायरी की वो सौंधी सी महक भी। जिस तरह कायनात की तुलना शहनशाह के ताज में जड़े नगीनों से की गई है वो पढ़ते ही जहन में एक भव्य और चमकदार दृश्य पैदा करता है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं गीतों के बारे में कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल और लीडर फिल्म

के गीत को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि तस्वीरें तस्वीरों यादों और घटनाओं का जीवंत प्रमाण होती हैं। तस्वीरों को देखते ही हम एक सेकंड में यादों के गलियारों में पहुंच जाते हैं। तस्वीरें अतीत को जगाती हैं और अगाध भविष्य के लिए धरोहर की तरह हैं, जैसे वो खूबसूरत ताजमहल या फिर जीवन से भरी तेरी आँखें। दुनिया में ये सब खूबसूरत कायनात की तरह जीने का सबब भी तो हैं। कुछ तस्वीरों में प्रेम भरी नदी सतत बहती दिखाई देती है। इस संसार में कुछ भी ठहरता पर तस्वीरों में हम जिंदा रहते हैं। जैसे कि ताज और हमारे बुजुर्ग जिनसे हमारा गहरा नाता जुड़ा है, कल को हम भी इन्हीं तस्वीरों के द्वारा याद किए जाएंगे। तस्वीरें वक्त की ऐनक हैं। अगर तस्वीरें न होती तो हम ताज का तस्वीर कैसे कर पाते।

श्रोताओं, क्या आपने ताज का दीदार किया है? अगर किया है तो चांदनी रात में ये कैसा नजर आता है, आप चाहें तो बता सकते हैं। लीडर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आपको बताने हैं, और वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी इबारत तस्वीर की बाहरी शोभा और यादों की भीतरी गहराई का सुंदर संतुलन बयां करती है। तस्वीरें सिर्फ गुजरे हुए वक्त का आईना होती हैं, खूबसूरत मगर खामोश। वे धड़कनों को थाम कर रखती हैं लेकिन उनमें जान नहीं फूंक सकती। असली जुदाई एहसास तो उस आवाज की खनक और बातों के उतार चढ़ाव में है जो रूह को छू लेती है। कैनवास पर उकेरी गई कायनात कितनी भी हसीन क्यों ना हो, वो उस एक पल के सामने फीकी है जब किसी अपने की बातें सीधे दिल के साहिल पर दस्तक देकर स्मृतियों को फिर से जीवंत कर देती हैं। सच ही तो है, तस्वीरों में रूप बसता है पर बातों में रूह। एक और श्रोता ने लिखा है, कायनात की खूबसूरती की तस्वीर किसी एक रूप में नहीं है, वो तो उगते सूरज की सुनहरी किरणों से लेकर डूबते सूरज की नारंगी आकाश तक में है। कभी रात के सन्नाटे में, तो कभी टिमटिमाते तारों में, कभी माँ के हाथ के खाने में, तो कभी किसी अनजान बच्चे की हंसी में। कायनात की तस्वीर इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें मोहब्बत है, और मोहब्बत की तस्वीर इसलिए खूबसूरत इसलिए है कि उसमें कायनात है। तो क्या ही बात है श्रोताओं, आप ये बताएं कि क्या आपको तस्वीरें बनाना पसंद है? प्रकृति की तस्वीर आपको बनाना अच्छा लगता है या फिर किसी इंसानी व्यक्तित्व की? एक और सवाल आपसे जोड़ लेते हैं कि कौन सा रंग तस्वीरों में भरना आपको सबसे प्यारा लगता है? वैसे जो पहला रंग गीत में भरा था वो प्यार का रंग था, जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया, और अब इस गीत को आपको पहचानना है। जो चित्रकार हैं उनका नाम बताना है, और जो चित्रकार हैं वो किन की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर तस्वीरें आपने भी अपने एल्बम में सजा रखी होंगी श्रोताओं। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है कि जब चाहें तब तस्वीरें निकाल सकते हैं, तो एल्बम की बात करें और मोबाइल की तस्वीरों की बात करें तो किन्हें संजोना आपको अच्छा लगता है और किन तस्वीरों को आपने ज़्यादा समय तक संजो कर रखे हुआ है, तो ये बात आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे ये गीत सफ़र फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में और राजेश खन्ना जो शर्मिला टैगोर की तस्वीर बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, समस्त सृष्टि की चित्र प्रतिमाएं सम्राट के मुकुट में जड़े रत्न मणियों जैसी लगती हैं, जिसे देखने को आंखें आतुर रहती हैं, जैसे कि किसी की बोलती आंखें रेशमी लहराती जुल्फें प्यार की ख्वाहिशों को जगाकर रूहानी मोहब्बत बन जाती हैं, यही प्यार के मोती स्मृतियों के पर्दे पर बिखरने लगते हैं, तब लगता है वास्तविक अनुभूति की अनोखी बात। और एक और श्रोता लिखते हैं, लियोनार्डो द विंसी के द्वारा कैनवास पर बनाई गई तस्वीर में इस कायनात के सारे रंग मौजूद हैं, रहस्य रोमांच मुस्कान शालीनता सुंदरता सब कुछ ही तो समाहित है। आप जिस एंगल से इस तस्वीर को देखोगे, इसकी सम्मोहित करती आंखें उसी ओर से आपको दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि हम तस्वीर नहीं देख रहे बल्कि तस्वीर हमें देख रही है। तस्वीर बना बीते हुए दिनों की यादों का पिटारा होती है। आज भी जब मैं पुरानी तस्वीरों को देखता हूँ तो सारी यादें मस्तिष्क पटल पर चलचित्र की भांति घूम जाती हैं और बीते दिन याद आ जाते हैं। कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखे हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। और एक और श्रोता ने लिखा है शब्दों के बारे में कि तस्वीर शहंशाह जीवन आंखें जुल्फ झूमती मोहब्बत और बात, ये शब्द शायद हो सकते हैं। अब आपको ये तस्वीर किन की बन रही है पहचानना है और ये अदाकार कौन है।

भारत भूषण पर फिल्माया गया संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का ये गीत था शैलेंद्र का लिखा एसएन त्रिपाठी की तर्ज थी मुकेश की आवाज थी। एक श्रोता लिखते हैं आज इबारत यादों के कैनवास पर तस्वीरों की बातें कर रही हैं इसलिए गीत इन्हीं पर आधारित होंगे और कुछ गीत इन्होंने बताए हैं बेशक यही गीत हैं और तस्वीरों की बातें हम कर रहे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीतों के बारे में और उसके बाद तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी पर ऐसे तो हो जिस तरह मौसम बदलता है तुमको भी देखूं रंग बदलते हुए। एक और श्रोता ने लिखा है तस्वीर आंखें जीवन जुल्फ प्यार हवा मोहब्बत तस्वीर मोती साहिल यूवर्स हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है आज के शब्द जीवन आंखें ठंडी हवा जुल्फ मोहब्बत और तमाम इन्होंने शब्द लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है गद्यांश में आज तस्वीरों की बातें हुई हैं जो प्यार के एहसासों और यादों की महफिल सजाए हुए हैं। एक और श्रोता लिखती है तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसे देखते ही मन उड़ने लगता है आज तस्वीरों के माध्यम से सुंदर गीत सुनेंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत तस्वीरों में समाई हुई है ये तस्वीरें सिर्फ कैमरा द्वारा या कागज के कैनवास पर खींची रंग भरी लकीरें नहीं बीते हुए लम्हों की यादें हैं जिसे देख मन उन पुराने गलियारों की ओर चल पड़ता है जिसे देख दिल बोल उठता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाँ एक बात है जो बात तुझमें मुझमें या हम में है वो तस्वीर में नहीं हो सकती लेकिन इन्हें देखकर दिल बोल उठता है हमने देखी है तस्वीरों में उन आंखों की महकती खुशबू हाथ से छूकर इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। और कुछ बातें इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमारे पुराने यादों की गठरी खुलने वाली है सच में हमें काफी समय हो गया है हमारी अलमारी में रखे एल्बम को देखा नहीं हमने आज तो रविवार है छुट्टी का दिन है जरूर हम एल्बम में सजाए फोटो का दीदार करेंगे और सुरीला सफर में बने रहेंगे। जी हाँ तो बने रहिए सुरीला सफर कार्यक्रम में और बताइए कि एल्बम में कौन कौन सी तस्वीरें आपने सजा रखी हैं और हाँ क्या आपके एल्बम में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं।

दर में वापस ले जाती है, जहां रंगों की जीवंतता और प्यार की महक आज भी ताजा महसूस होती है। ये बीती हुई यादों को संजीवने का सबसे खूबसूरत और भावात्मक जरिया है। वास्तव में तस्वीरें हमारे जीवन की वो खिड़कियां हैं जिसे हम जब चाहें अपने बीते हुए कल को झांक सकते हैं और अपनों के साथ बिताए प्यार को फिर से महसूस कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हमारे शहर में बारिश की आशा है। जी हाँ, तो बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, सागर भी तरसते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, और तमाम सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता ने जीवन से भरी तेरी आंखें, झूमती चली हवा, तस्वीर तेरे दिल में, ये सारे गानों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कायनात के राज समझना सचमुच बहुत मुश्किल है, सुंदर सी ये रचना किसी मूर्तिकार की मूर्ति की तरह नजर आती है। कुछ गीत लिख रहा हूँ, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है एक शहनशाह ने बनवा कर, और कुछ एक गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं किसी की खूबसूरती की बातें होने वाली हैं, उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसकी आंखों की भी बातें तो हम जरूर सुनेंगे। और इन्होंने और कुछ भी बातें लिखी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीर है, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं, तस्वीर तेरी दिल में, और तमाम गीतों को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर के बारे में लिखना, तस्वीर बनाता हूँ नहीं बनती, और एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती, और गीतों को मिलाकर इन्होंने कुछ पैरोडी की तरह बनाया हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं तस्वीर और हकीकत का रिश्ता बड़ा अजीब है, तस्वीर वक्त के समंदर से चुराया हुआ एक ठहरा हुआ लम्हा है, जहाँ न कभी उम्र बढ़ती है और न मुस्कुराहट फीकी पड़ती है, जबकि हकीकत लगातार बहती हुई नदी है जो हमें आज के सच से रूबरू कराती है। तस्वीर अतीत की एक सुरक्षित तिजोरी है जिसे विपरीत हकीकत गतिशील है, जहाँ वक्त का गुजरना, चेहरों चेहरे की झुरियाँ और अनुभवों का जुड़ना शामिल है। तस्वीरें यादों का आईना होने के नाते बेहद जरूरी हैं, लेकिन जब कोई हकीकत में हमारे सामने बैठकर बात करता है तो उसकी आवाज़ की खनक और सांसों की गर्माहट जो जीवंत एहसास देती है, उसे दुनिया का बड़े से बड़ा फोटोग्राफर भी कभी कैमरे में कैद नहीं कर सकता, ऐसा इनका लिखना है। कश्मीर की तस्वीर के बारे में हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के बारे में पूछा था। क्या आपको सनसेट की तस्वीरें निकालना पसंद है?

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे बिन बादल बरसात फिल्म से, जो आशा पारेख और विश्वजीत पर फिल्माया गया, और इसके पहले हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था। विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये गीत, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेम रस में डूबी इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचको लिखाती समुद्र में गोती लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान को छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिंदी में टेक्स्ट लिखें तो बहुत ही क्या ही बात है। फिर लिखते हैं कि द टेक्स्ट इज अबाउट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड एंड दैट इज आइज। विदाउट दैट गिफ्ट ह्यूमन लाइफ इज यूजलेस। ब्यूटिफुल आइज आर अ पार्ट एंड अ पार्टिकल ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड पोएम्स are as well as prose have described the beauty of eyes. All the best. इन्होंने एक दूसरे श्रोता हमारे लिखते हैं, कायनात की सबसे सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अक्सर दिल में बसती हैं, कुछ आंखें कुछ जुल्फें और कुछ बातें उम्र भर याद रह जाती हैं, वक्त बीत जाता है मगर उनकी यादें दिल के साहिल पर लहरों की तरह लौटती रहती हैं, मोहब्बत के मोती आज भी यादों के कैनवास पर चमकते हैं, तस्वीरें बहुत कुछ संभाल लेती हैं लेकिन एहसासों की गर्माहट कहाँ सहेज पाती हैं, इसलिए दिल आज भी धीरे से कह उठता है वो बात तस्वीर में कहाँ। जो आगे भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, आप फिलहाल ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए कि ये जो चिट्ठी है यानी जो खत है उसमें किसकी तस्वीर नजर आती है और ये अभिनेत्री कौन है।

जागीरदार जो एक्टर हैं उनकी तस्वीर नजर आती है इस गीत में श्रोता, जो अभिनेत्री अजरा के हाथ में है। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल लुधियानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत प्यार मोहब्बत वादे बोलती आंखें लहराती जुल्फें कस्में वादे प्यार वफा जैसे खूबसूरत अल्फाजों से सजे एहसासों को प्रदर्शित करती है। समय का चक्र इन घावों पर मलहम लगाकर भर देता है, पर फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में वो तस्वीर उभर आती है जो अतीत के जीवन को साफ दर्पण में जो अतीत को साफ साफ दर्पण में दिखती है। अतीत की यादें कभी मिटती नहीं हैं, वो धुंधली जरूर हो जाती हैं। जी हाँ, इन्हीं तस्वीरों की यादें आप साझा कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कोई चेहरा है, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनमें एक सच्चा एहसास बसा होता है। जब सादगी और मुस्कान साथ हों तो तस्वीर सिर्फ देखी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। तो आपको भी ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताना है। और श्रोताओं, आजकल तो लोग यानी कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं ऐसी जगहों की तरफ घूमने चल दिए होंगे जहां बारिशों में बड़ी सुंदर तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। तो क्या आप भी ऐसे सफ़र पर हैं, या कभी आपने बारिशों की तस्वीरें किसी ख़ास जगह पर उतारी हो, तो आप हमसे ज़रूर कह सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर की बात कहूँ तो जब मैं एनसीसी कैंप भोपाल गया था तो मुझे राइफल SLR चलाने के लिए दी गई थी। सचमुच ही वो मुझे बहुत आज भी याद है। उस राइफल की तस्वीर आज भी मेरे एल्बम में रखी हुई है, जिसमें दाहिने हाथ में मैं खड़ा हूँ, बाएँ हाथ में मेरे मैनेजर सर हैं। सचमुच ही तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सुरीला सफर।

अभिनेत्री मधुबाला की जो तस्वीर है वो बहुत सारे शीशों में नजर आती है श्रोताओ, इन शीशों की कुछ खासियत है, इनके बारे में क्या आप जानते हैं तो हमें जरूर लिखें। मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति के रंग कभी बनावटी नहीं होते, इसलिए वे हमेशा दिल को अच्छे लगते हैं। शायद सच्ची खूबसूरती भी वही है जो बिल्कुल सहज हो। हर फूल एक रंग है, हर पत्ता एक मुस्कान और हर सुबह प्रकृति की बनाई हुई एक नई तस्वीर। बस उसे महसूस करने का मन होना चाहिए। एक और श्रोता लिखती हैं, रात में जब चांद की रोशनी सफेद संगमरमर से बने ताजमहल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ताजमहल चांदी की हल्की परत से ढक गया हो। यमुना नदी के शांत जल में ताजमहल का प्रतिबिंब इस सौंदर्य को और भी मोहक बना देता है। आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार

माला सिन्हा और देवानंद पर फिल्म है गया ये किताब सुन रहे थे। फिल्म माया से मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा सलील चौधरी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखती है, सुंदर चेहरा और सुंदर आंखें केवल ईश्वर के द्वारा ही बनाई जा सकती हैं, असलियत में चित्रों में नहीं। एक और श्रोता लिखती है, चांदनी रात में खिली किसी मुस्कान सी वो हसीन तस्वीर जैसे किसी खूबसूरत नज़्म का अधूरा शेर हो। इसे निहारते हुए ऐसा लगता है मानो थम गया हो वक्त। वो अल्लड़ अदाएं जो तस्वीर में भी एक मदहोश कर देने वाली दास्तान कहती हैं। और इसके आगे भी इन्होंने लिखा है, एक और श्रोता लिखती हैं, कायनात की तस्वीर ईश्वर ने न जाने कौन से कलम से कौन से रंगों से उकेरी है, कौन से कागज कैंची से पत्ते काटे, अलग अलग शेप पर साइज सेम, अलग अलग शेप पर साइज सेम, और कौन से महीन ब्रश से ऐसे रंग भर दिए, रोम रोम साफ दिखता है, कितना भी कोशिश करो वैसा फिर कोई नहीं बना सकता।

बारह तेरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, खुमार बाराबंकी के बोल थे, शौकत दहलवी की तर्स आपने सुनी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैंने बहुत सी पेंटिंग जिसमें सीनरी फूलों की अल्पना मॉडर्न पेंटिंग वगैरह बनाई है, शादी ब्याह के बाद अब कुछ खो गई हैं, कुछ खराब हो गई हैं, तो पेंटिंग

जो है मेरे चाचा को तरह तरह की पेंटिंग बहुत पसंद थी। उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की बहुत कदर की और सामान जैसे ब्रश, कलर, बोर्ड बहुत खरीद कर दिए। अब वो नहीं हैं और उनके घर से पेंटिंग कहाँ गई पता नहीं। मेरी एक मॉडर्न पेंटिंग मेरे पिताजी के एक मित्र ले गए थे। जी हाँ, अगर कोई कला आप में है तो उसके लिए लोग आगे आएं और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो दें तो क्या ही अच्छी बात है। जैसे इन्होंने ब्रश और पेंट्स की बात कही, एक और श्रोता ने लिखा है कि 1970 में बहन की शादी की ब्लैक एंड वाइट वाइट एल्बम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है। उस समय के छोटे छोटे बच्चे आज 56-60 साल के हो गए हैं। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज हमारे शहर का मौसम खूबसूरत है, मौसम ठंडा है, रिमझिम रिमझिम फुहार हो रही है। मैंने इस मौसम की तस्वीर वीडियो बनाकर रखा हुआ है। पिछले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं, जो गीत आपने सुना, और इस गीत में आप बताइए कि अभिनेत्री कौन है।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सनराइज सनसेट की फोटो खींचना बहुत पसंद है और बादलों की काली घटाओं की रात में चांद की तारामंडल की सबकी फोटो खींचना बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सूर्योदय सूर्यास्त नदियां तालाब झील पर्वत देवदार और वृक्ष पक्षी ये सब बनाने में अच्छा लगता है।

शहर का तस्वीर है इस तस्वीर में, ताजमहल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस तस्वीर में जो मुकम्मल बन नहीं पाती, ये है बीना रॉय की तस्वीर और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज़ में रोशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहाँ परिवार के संबंधियों, यात्रा, प्रकृति सभी की हैं तस्वीरें, और नाना नानी, दादा दादी जी, माँ पापा की ब्लैक एंड वाइट फोटो भी हैं, तो तस्वीरों की यादों को ताज़ा करता कार्यक्रम सुरीला सफ़र अब यहीं संपन्न होता है। आप रहिए विविध भारती के संग। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए विविध भारती के संग, क्योंकि आगे भी है हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स।

अरिजीत सिंह और एकलव्य की आवाज में अभी आपने मनोज मुंतशिर का लिखा गीत सुना। संगीतकार थे रोचक कोहली। फिल्म का नाम था थैंक गॉड। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत में आवाजें हैं देव नेगी, श्रुति राणे और साथियों की। कुमार ने लिखा है, गौरव दास गुप्ता का संगीत है और फिल्म का नाम निकम्मा।

कविता सेठ और कनिष्क सेठ की मिली जुली आवाजों में हम आपको जुग जुग जियो फिल्म का गीत सुनवाते हैं।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव रहा है।
1: ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, हमारे संकल्प समान हो, हमारी सोच समान हो, हमारी संवेदना समान हो, ताकि हम सब एकता, समरसता और सद्भाव के प्रतिमान स्थापित करें।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जगदीशपुर में बैठक के दौरान 10.54 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि 1460 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान भी मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सानू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री रिजिजू ने कहा,
2: पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17 से हराया। इससे पहले उन्होंने 2024 में सैयद मोरी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी। पीवी सिंधु जापान ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल सुंदर के स्थान पर ऑलराउंडर हर्ष दुबे की टीम को शामिल किया गया है। भारत ने साउथहैम्पटन में श्रृंखला का पहला मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड के कार्डिफ में दूसरा मैच जीतकर श्रृंखला बराबर कर ली। भारतीय टीम आज का मैच जीतकर एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला अपने नाम करना चाहेगी। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर संभाग सहित प्रदेश के 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में मौसम सामान्य और साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के आसपास 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक टर्फ सिस्टम सक्रिय है। इसी कारण शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम सहित कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग का अनुमान है कि आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
3: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
4: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़।

0: वो उन जो बन गई मोती, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, भरत व्यास की रचना थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
5: ओ तेरे प्यार का।
4: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
5: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
4: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
6: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
4: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
7: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
4: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

Thank you.

0: आप सुन रहे थे लाज साहब फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोताओं सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश आपने सुनी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सुहाना।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
7: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
8: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 और 30 सेकंड हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीली गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ, और ऐसे में हूँ आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जीने की राह फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज से। इस गीत की फरमाइश की सिमगा से, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को सुनना चाहा जारूर वारूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने।

पत्थर की सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इसी गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से। केवर कॉलोनी बाड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मनचाहे गीत।

फिल्म आंधी का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह फिल्म में आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विला सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी, माहिती चंद्रया, मल्लवा, नरेश, लावण्या, महसिविन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लूफर से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन ने, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा, दीपक गौतम, बिट्टू बिट्टी, अरिहंत, सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

ये गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा, गोवर्धन वर्मा, रवि मिश्रा और शंकरलाल पारिक ने, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी नया अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन, अब्दुल अजीज अफियत, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपार, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मन चाहे गीत प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। रहिए विविध भारती के संग और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।

0: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहाँ बैठ जाइए ना।
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूँ।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते?

0: का बेटे कौन कहेगा?
1: मैं लाचार हूँ पिताजी।
0: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
1: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार।
2: आप कुछ सुन रहे हैं क्या?
0: नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
0: हाँ सब ठीक ही है।
3: क्या कह रहे हैं आप?
0: राजेश की माँ, जिस धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहाँ, जहाँ धरती तरक गई हो, दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहां राजेश की माँ मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
3: लेकिन आप क्या कह रहे हैं
1: पिताजी?
0: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
1: आप आराम से बैठिए ना।
0: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
4: इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
0: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
0: क्यों,
4: नहीं पूछना चाहिए क्या?
0: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
4: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
0: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
4: क्या कह रहे हैं आप?
0: सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ, चला जा।

0: अब क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
1: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश? अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अरमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्यों की बलाया? अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
0: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
1: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
0: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
1: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
0: नरेश करम तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
1: और कोई ऐसा रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके।
0: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित के यहाँ जा

0: पता?
1: फिर कहाँ गए होंगे वे?
0: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
1: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
0: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहती?
1: गलती तो जरूर हुई है माँ।
0: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
1: ऐसा ना कहो माँ।
0: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
1: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
0: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
1: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
0: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
1: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
0: अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
1: अपनी ओर से तुम्हें पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
0: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी ठहरती रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
1: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो, जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
0: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी।
1: ये क्या कहती हो माँ?
0: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
1: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
0: तुम ही बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ।
1: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
0: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
1: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा,
0: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी आई हूँ माँ।
0: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
0: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था।
0: भूख होगी तो खा लूंगी।
1: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
0: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
1: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहो माँ।
0: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
0: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ, तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी ये घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
0: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
2: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: ये सब क्या कह रही हो तुम, बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
2: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ।
3: नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
2: क्या करूं माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ। अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूँ माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूं माँ, काश कि मैं नहीं रहती माँ।
3: ये सब क्या कहती है बेटी, ये सब मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
2: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ, तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
3: मैं अभी जा कहा रही हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ।
1: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगाकर करेंगे। यह और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोजकर घर ले आना है।
3: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान।
1: ये एकाएक क्या हो गया भैया? तुम सब कुछ जानते हो नरेश, मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सम रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, तभी आपका तार मिला।
4: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
1: मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
4: हाँ, मिल गया।
1: लेकिन लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, क्या कहकर गए थे, कैसे गए यहाँ से?
4: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो यह हुआ कैसे?
1: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वे घर छोड़कर चले गए?
4: दूसरा क्या?
1: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
4: तुम सब समझते हो नरेश।
1: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
4: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
1: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है।
4: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
1: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
4: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
1: गए तो थे।
4: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
1: हुई थी।
4: तुमने क्या कहा था?
1: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
4: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
1: आपके यहाँ क्या बातें हुई?
4: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
1: उन्होंने क्या कहा?
4: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूँ, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
1: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
4: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हजार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
1: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ?
4: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
1: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था?
4: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुम्हें रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
1: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
4: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था, और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
1: जानता हूँ मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी, मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
4: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
1: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
4: समस्या? क्या समस्या है?
1: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
4: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
1: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
4: समस्या तो कठिन है ही।
1: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रहा हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाएं। कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
4: बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
1: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
4: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूँ।
1: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
4: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
1: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हम ही लोगों को निभाना है।
4: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया।
1: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
4: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा। पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
0: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
1: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
0: कितने दिन तो हो गए।
1: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं ले सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
0: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
1: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
0: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है। अब क्या होगा?
1: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
0: क्या सोच रहे हो तुम?
1: अब मैं क्या सोचूं माँ?
0: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
1: ऐसा ना कहो माँ।
0: अब मैं क्या करूंगी बेटे? अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
1: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
0: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती। मरती भी तो शांति से मरती।
1: यह सब मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
0: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
1: होगी क्यों नहीं माँ? कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
0: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
1: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
0: इतना आसान है बेटे?
1: है कि नहीं?
0: इतने रुपए लगेंगे।
1: हम लोग खर्च करने को तैयार हैं माँ।
0: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
1: मैंने नरेश से बातें की है।
0: क्या कहता है वो?
1: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
0: और उससे कुछ ना हो सका तब?
1: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
0: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
1: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
0: कौन करेगा इतना खर्च?
1: क्यों, मैं करूँगा।
0: सचमुच?
1: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
0: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
1: हाँ, सोच ही लिया है।
0: और बहू से पूछा है तुमने?
1: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
0: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
1: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
0: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
1: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
0: सोचना क्या है?
1: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
0: कैसी इच्छा?
1: कृष्णा की शादी की?
2: हाँ, शादी तो करनी ही है।
1: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
2: उसमें तो बहुत रुपये लगेंगे।
1: हाँ, रुपए तो लगेंगे ही।
2: आएंगे कहाँ से?
1: उपाय करना पड़ेगा।
2: क्या उपाय करेंगे आप?
1: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
2: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
1: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
2: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
1: तो दूसरा कौन करेगा?
2: और नरेश?
1: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
2: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
1: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेदारी ना समझे तब?
2: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
1: और यदि वो समझने से इनकार कर दे तब?
2: तब परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
1: और क्या सोचना पड़ेगा?
2: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
1: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी, वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
2: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल ना करें। अपनी तीन बच्चियाँ हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
5: भैया, भैया, भैया, क्या हो गया भैया?
1: क्या हो गया? क्या हुआ क्या नरेश?
5: चलकर देखे तो भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया, पंखे से छोड़ गई है।
2: क्या किया बेटी तूने, क्या किया तूने, क्या किया?
1: मैंने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश? कृष्णा ने लिखा है।
2: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ, लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है, मेरे कारण पिताजी घर से चले गए, मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो, मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती, मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो, मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई, माँ क्यों लड़की हुई, लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ, अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: आप ही से तो पिछली बार भेंट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। फिर मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
1: ये अखबार आज का है?
0: हाँ, आज ही का है। लीजिए,
1: देखिए। ये पत्र राजेश ने छपवाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपवाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहां भी हो लौट आइए, हमें माफ कर दीजिए। पूरा घर दुख में डूबा हुआ है। कृष्णा नहीं रही, माम मरना सुन्ने है।
1: माम मरना सुन्ने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
0: क्या बात है भाई साहब?
1: मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णा नहीं रही, क्या मतलब है इसका? कहाँ नहीं रही दुनिया में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: ये आपके घर की चिट्ठी है। लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
1: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
0: आपकी पत्नी बीमार है।
1: आप मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई, कैसे मरी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूँ तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? क्या उसने आत्महत्या कर ली? नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है, मैंने उसकी हत्या की है।
3: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: ये है विविध भारती,
5: उजाले उनकी

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताओ कैसे
1: लग रहा है? नाता है।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था
1: जी।
2: और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी
2: जी,
1: थी। काफी पुराने दिन आपको
2: जी,
1: याद
2: जी,
1: आ गए।
2: जी, सही बात है
1: जी। अब रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल, मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी, रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना, मुझे सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई, मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से कि नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई, बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैंने ही रचाई। कहते और कोई कहानियां? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम कहानियां, बड़ी कहानीकार बन गई तुम तो, लिखो 3 पन्ने कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
1: तो मजा था कि सजा थी?
2: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ, मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
1: सुंदर नाम।
2: लेकिन मुझे लगता है उसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
1: जी जी। हाँ,
2: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवे में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
1: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है। फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
2: करेक्ट,
1: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां
2: जी,
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको
2: इसमें कोई शक नहीं और बिल्कुल मैं कहती हूं ज़हीर नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया जरा भी नहीं मतलब शुरू में बहुत चाहते थे सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में लेकिन मेरा तो क्या कहें कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ लेकिन नाना ने हम दोनों सुबह-सुबह घूमने निकलते थे नाना को बहुत शौक था वो 100 साल तकरीबन हो के फिर चल बसे उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था मेरे बचपन में मैंने तो बहुत कहानियां सुनी तो वो ग्रिम्स या एंडरसन ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का बाल वांग में लिखने वाले तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें प्यार जतलाया जिंदा किया मेरे अंदर मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी और माँ ने माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की और फिर सोचा वो थी तो अपना ही करने वाली थी वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ दोनों ने शादी की दो साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और पुणे आ गई
2: हाँ पुणे आ गई और नाना के पास मतलब अपने पिता के पास मेरे नाना अप्पा हम कहते थे और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी
1: बिल्कुल रघुनाथ
2: पुरुषोत्तम
1: परांजपे जी एक बहुत बड़ी हस्ती एक राजदूत एक शिक्षाविद फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर
2: जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है
1: क्या बात हाँ, है तो हाँ. वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है
2: ओ डियर चलो मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ बहुत ही बड़ा
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए वो तो अभिनेत्री भी थी
2: अभिनेत्री मत कहो क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया दुनिया न माने या मराठी में कुंकू हाँ उसमें अच्छा रोल था चित्रा का जो कि शांता अपटे हीरोइन थी फिल्म की उनकी वो सौतेली माँ लेकिन हम उम्र मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी उसके बाप से उसकी शादी होती है लेकिन कोई खास रोल बना नहीं अच्छा नहीं किया मैंने कहा भी बाको कि ये क्या तू कहते इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई लेकिन यूनुस एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया लिखा भी लेखिका तो थी नाटक लिखा पांघर लेली कातड़ी मतलब पहना हुआ खाल हाँ तो उसमें एक किरदार है कोइंड मछुआरी का हाँ तुलसा नाम की हाँ बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी माँ ने सोचा लेकिन अब मछुआरे का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के वो तो आसान नहीं था फिर उन्होंने क्या किया हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए रोज रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना बम्बई से सीधा माहिम कोड़ीवाड़ा है मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बसता है वो और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोड़ी टाइप का साड़ी पहनती गहने पहनती बालों में फूल रचा लेती और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना वो कैसे बैठती हैं कैसे बोलती हैं कैसे चलती हैं कैसे अंदाज है उनके वगैरह वगैरह और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा वो कभी खत्म नहीं हुआ और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे खेले डायरेक्ट किया वो एक प्यार बना रहा लेकिन वो और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैनिस्लावस्की पढ़ा और स्टैनिस्लावस्की का कहना है आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो
1: जी,
2: है ना
1: बिल्कुल
2: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था
1: सही, हाँ?
2: कि
1: सही.
2: रोल कैसे जीते हैं वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया तो ये सब ऐसी बातें थी और वाकई में बहुत ही हट के बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी
1: हाँ कमाल की बात है कि आप बड़ी शरारती थी
2: नहीं शरारती
1: थी।
2: नहीं थी इतनी मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और कोई वजह हो कभी ना भी हो ज्यादातर ना भी होती थी फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी और हमारे गली में हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम सही की तरह पिटाई करने का और मुझे इतना अपमान लगता था आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड तो ये बहुत था इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है माँ पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना
1: वाह वाह हाँ, बड़ा प्यारा
2: तो
1: था ये।
2: हाँ बहुत स्वीट तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी और प्यारी गुड़िया तो फिर गुड़िया की शादी होती थी और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी मेरी भी गुड़िया थी लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं तो मैं कहती थी नहीं लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ मुझे भी तो बुलाना चाहिए मैं भी बुलाना चाहती हूँ तुम्हारे नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं चुप करवाती थी मुझे लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही मैंने जिद की और बहुत ही हट गई मैंने कहा नहीं मैं शादी तो ये होके ही रहेगी तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो फिर मुहूर्त देखते हैं और बाकायदा मुहूर्त देखा और फिर तुलसी बाग करके पुणे में एक बहुत फेमस मार्केट है तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले और छोटा सा जूड़ा था और साड़ी पहनी थी मुझे अच्छी तरह याद है हरी रंग की साड़ी थी तो उनकी शादी हमारे घर हुई बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि उसको क्या बोलते हैं पर्ल्स लाते थे उनकी मालाएं बनाना उनके कान के गहने बनाना ये बनाना वो बनाना क्या क्या क्या क्या चलता था और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की
1: अरे वाह
2: सफेद घोड़ी एक्चुअल घोड़ी फिर एक बैंड बुलाया स्काउट बैंड साफे वाले हाँ गुलाबी साफे वाले सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे अपने अपने वाद्य लेके आए उनका बैंड और ये घोड़ी और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया गुड्डा गुड़िया और फिर हमारी बारात हम घर से अपने निकले हम परांजपे रोड पे थे मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुणे में कि सही के गुड़िया की शादी
1: गजब गजब ये तो इतनी भव्यता के साथ शादी की गई
2: जी और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई
1: हाँ ये भी एक विडंबना की बात
2: लेकिन
1: है ये वाला जिक्र आगे की तरफ करेंगे ये सूत्र पकड़ेंगे आगे लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं
2: अरे क्यों
1: एक
2: नहीं?
1: फिल्म में जो बात आती है गुड़िया कब तक रूठी रहोगी
2: हाँ,
1: मुझे लगता है वो उसी जज्बात को वो
2: वाह वाह क्या बात
1: तो वो गाना सुनते हुए आगे बढ़ाते हैं बात

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स
1: जी
0: डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े साहित्यकारों
1: या
0: को
1: या
0: पढ़ रखा
1: या
0: था।
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन,
0: हाँ
1: स्कॉट, और
0: बिल्कुल।
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी, और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स वगैरह।
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हाँ, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है,
0: जी
1: हाँ, भारा भागवत, और दुनिया भर के साने गुरुजी, और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिड़क की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकानापन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली, और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा इसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहाँ बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं, और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या क्या क्या नहीं होता। तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पढ़ रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो ये तमाम चीजें हैं।
1: हाँ
0: लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: आहा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात। वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी,
0: जी
1: बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस, आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया, और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड़ैनी देने आहे वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे,
0: जी
1: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
0: जीवन
1: तो
0: शैली का।
1: जीवन शैली का, बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां,
0: हाँ ये बड़ा मजेदार
1: हाँ।
0: है।
1: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या द गुड अर्थ, या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की, फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बानूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस, कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं, और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है। मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे
0: वाह
1: कहानी, और
0: वाह,
1: वो जैसे कहानी झुलसती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था,
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: बिल्कुल।
1: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूँ, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई।
0: जी
1: राम
0: जी
1: जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
0: शायर हुए।
1: गाने
0: जी
1: वाले, हाँ।
0: जी
1: तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनके बुरे तरह, वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी, वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी। हां और ये कहते तो है बड़े जोरों से लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त बड़े परेशान शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान और अच्युत मामा ने कहा फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं इधर से उधर जा रहे हैं उधर से उधर जा दाएं से बाएं से दाएं और कैमरा उसके साथ-साथ हम जा रहे हैं और कैमरा के साथ हम और उनके धोती के सुराई की नोक अटकती है हां सुराई की नोक ही कहते हैं ना तो सुराई की नोक अटकती है और वो सुराई साथ-साथ उनके वो जा रही है और ये हम देख रहे हैं तो मैंने कहा अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना तो उसने कहा बहुत शाबाश वेरी गुड तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा और सच बात कहूं थोड़ा घमंडीपन लगेगा लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था ये दरअसल पर्दे पर जो आया है इतना मजा नहीं आया और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी ये उस लम्हे तय हुआ
0: वाह
1: ऐसा मुझे लगता है पता
0: गजब गजब गजब तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा हैं वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार
1: देते जी देखो वो साथ-साथ होता रहा है
0: कह के सुनाते हैं दूसरी तरफ नाटक चल रहा है मां जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा बनाती है लेकिन दो बातें जो हैं वो मुझे बड़ी जरूरी लग रही हैं पूछनी एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली ये कहा जा सकता है क्योंकि मां भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है क्यों और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है
1: वो इत्तेफाक की बात है हां अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना नहीं वो जान गए कि इसके बस का नहीं है इसको नहीं आता तो मान गए बेचारे क्या करते लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था हां और आखिरी महीने जैसा होता है मैं पढ़ाई मैंने शुरू की साल भर मस्ती की ये वो किया और फिर जग गई आखिरी महीने में तो फिर पढ़ाई शुरू और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया सही परांच पे कौन मैंने कहा जी मैं हूं ये आपको आया है पुणे रेडियो से आया था वो आकाशवाणी पुणे से और पढ़ा तो क्या था ऑडिशंस थे दूसरे दिन मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस और मुझे बुलाया था अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि ये किसने मुझे क्यों भेजा ना मेरा कोई नाम था तब कुछ नहीं और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे तो माने कहा कि कब है कितने बजे है ये ऑडिशन मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे कहते हैं मतलब शाम को है तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूं तो हो आओ देख तो लो क्या है जा तो फिर मैं साइकिल तब साइकिल चलाती थी अपनी साइकिल चला के डेकनियम खाना से तब वो ससून के पास होता था सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए एक कागज पकड़ाया मुझे कहते हैं ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट्स ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल
0: हाँ
1: अब मुझे माँ का एक और ये बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक वैसे हमारा खानदान था नास्तिक मेरे नाना नास्तिक थे भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे
0: जी
1: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह उनमें परिवर्तन आया ही बिकेम रैशनलिस्ट और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा और वो इतना खजाना है संस्कृत में तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी और श्लोक आज भी मुझे 101 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे और स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र सूर्य स्तोत्र राम रक्षा ये सब मैं अभी भी रावण स्तोत्र जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म
0: पूरा याद है शिव तांडव स्तोत्र
1: पूरा तो नहीं लेकिन याद है तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाट और बिजान से कड़कड़ाट से क्या डरूं है ना तो वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया लाइट बंद हो गया तो मैंने दरवाजा वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने हुए भारी होते हैं
0: वो ही
1: करके मैंने खोला दरवाजा दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा कहता है कल से आ जाइए मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए मैं कल से तो नहीं आ सकती मेरा इम्तिहान है मुझे घर से निकाल देंगे मुझे इम्तिहान देना है मैं नहीं कल से आ सकती ओहो तो आप ऑडिशन के तो मैंने कहा ऐसे यही देखने क्या होता है वगैरह ओहो मायूस हुए सब लोग तो नहीं मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक फाटक तक पहुंची एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया आपको बुलाया है मैंने कहा नहीं अब क्या है कहते नहीं नहीं बुलाया आइए आइए फिर गई उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है मैंने कहा कोशिश करते हैं लाइए तो फिर और एक पन्ना पढ़ा वो भी मैंने पढ़ा तो और भी आसान था अंग्रेजी सिंपल था फिर दरवाजा खोला फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर कल से आ जाइए और फिर कल से मैं जाने लगी
0: जी
1: और तब वो मुझे तनख्वाह अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपये
0: वाह वाह
1: और
0: वाह
1: मैं बड़ी खुश कि वाह वाह ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया इतना इतनी मजे की बात इतना मजे का चांस इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए बहुत खुश हुई और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी
0: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने
1: नहीं नहीं ऐसे कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पुणे एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह ऐसा कुछ दिन का जो भी छोटा मोटा तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी 5 या 10 मिनट की ऐसी दैट्स इट और हाँ और फिर एग्जाम हो गया एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई
0: 3 गुना बढ़ गई
1: 3 गुना फिर भी 150 मतलब क्या है कुछ भी नहीं एनीवे तो उसी में भी मैं खुश थी तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ तो एक दो दिन अच्छा लगा लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से हाँ तो वो तो बात बनी फिर दैट वाज ग्रेट फन आई एंजॉयड दैट
0: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया
1: नहीं ट्रंक कॉल नहीं वो बताती हूँ किस्सा ताई ताई कहते थे मराठी ताई मतलब दीदी
0: जी
1: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे एक नाना जो बुजुर्ग थे जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर और मैं उनकी असिस्टेंट मैं दीदी और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था टेलीफोन नंबर उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो मुझे गदी माडगुल करके घर का फोन दे सकती हैं
0: वाह वाह वाह
1: तो लम्हे सन्नाटा फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं मैंने कहा

0: फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से। वाह,
0: और ये पहला अनुभव था और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं। जो आनंद वो पहले उसमें था ना कि ताई ताई बोलते हैं यू नो, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन
0: नहीं,
1: जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी, गदी माडगुलकर, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा, कौन
1: दो
0: सा?
1: आंखें बारह हाथ उन्होंने लिखी थी, ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी, वो तो गदीमा ने ही लिखी थी, है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम,
0: क्या बात।

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक का नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहाँ बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भाई

0: इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे, तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मनती बोर एक पहा किती तेरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है।
1: जी
0: फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ तो मैं कोकिला आ आ कर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है लिखता है, और हर एक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: हाँ उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्टकार्ड आया, फैन मेल, किसका, पु ल देशपांडे।
1: अरे वाह
0: हाँ
1: वाह वाह, क्या बात
0: कि
1: है।
0: सही तुझी श्रुति का आइकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीजरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाचा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी पहले था पक्षांत से कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से, हाँ तीन नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूँ हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
1: वाह
0: हाँ और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरी का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान चार जो है ना, अंग्रेजी नाम
1: जी
0: बताती हूँ,
1: जी जी
0: हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल हैं, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयाँ शुरू है जिनका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट, इन अ ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ ये शांति दूत बनेगा फला आदम का, ये वो। और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे, एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरी के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी, और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरी का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली का गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे, उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट, तो मैं लिखती गई, माउस प्रकाशन ने छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में, और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते
1: कर भी
0: रहते
1: लेते हैं
0: हैं,
1: लोग।
0: कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बदूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहां ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
1: सचमुच वो एक लड़की दिखी,
0: हाँ, वो नीचे और दिखती वो है नेहा,
1: पत्ते
0: हाँ।
1: से फैसला करते हैं कि
0: अच्छा,
1: जिसके पास रानी आएगी
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो जाएगा।
0: ओ, ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं और वो दो मुस्टंडे बेचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
1: बिल्कुल बारी बारी से फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बदूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया और मुझे लगा यहाँ चश्मे बदूर का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस दौर की
0: कहानी चल रही है। कौन सा गाना सुनाओगे?
1: आपकी पसंद।
0: चश्मे बदूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार
1: बिल्कुल सुनते, काली घोड़ी द्वार खड़ी, वाह सुनते हैं।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहाँ से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था जो आपको मालूम ही है, अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ पर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे अब अगला शो कब है, तो मैं अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में, हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगलेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है।
1: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
0: जी,
1: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको
0: जी, तो वो अखबार में विज्ञापन देखा।
1: हाँ, तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रन थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो सकता है। तो
0: अच्छा, ऐसे ही कह दिया।
1: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। कहते कैसे कैसे थे? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। एक महीने में शादी आपको आप पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके आपसे, वगैरह वगैरह बातें होगी। एनीवे, तो आई ज्वाइंड एनएसडी and that's how I joined. For the first year, it was not a very exciting year, क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रन थिएटर और यहाँ पहुँच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा एनएसडी में, और वो था इब्राहिम अलकाजी।
0: क्या बात है?
1: तो वो आ गया और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब साथ जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटास्टिक, ही वाज अ फैंटास्टिक टीचर। अब बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं, इट वॉज रियली वंडरफुल।
0: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था।
1: नहीं, आषाढ़ का एक दिन,
0: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए। आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
1: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया,
0: पत्नी जो होती है,
1: हाँ, कालिदास की पत्नी रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मज़ा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया हाँ हाँ हाँ करा उनके आगे, अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स मैंने एंटिगनी में इज्मिनी का रोल किया।
0: वाओ,
1: हाँ मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी।
0: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
1: जी
0: जा रही थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी दोनों मेरे क्लास
0: ओ
1: में थे,
0: जी
1: और तब भी दोनों का रोमांस था, खैर वो बात और है। लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वॉज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है, और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा,
0: जी
1: उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को से लुढ़क जाती है उसकी गोद में, और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ,
0: वाह,
1: और ओह रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है, और
0: वाह,
1: इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी। फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन ही नहीं। हमें बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से, और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए, कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब
0: जी
1: टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतना बढ़िया उन्होंने मतलब पूरा यही बदल दिया। दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की, वे पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने, और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।
0: जी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह
1: वेरी
0: बनाते
1: गुड,
0: हैं।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

प्रस्तुत है छाया गीत। आप सभी को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। सावन की फुहारें चारों ओर अपनी खुशबू बिखेर रही हैं। कहीं भीगती गलियां हैं तो कहीं बारिश के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं, लेकिन इस खुशनुमा मौसम में भी एक दिल ऐसा है जो किसी अपने की याद में खोया हुआ है। मौसम मुस्कुरा रहा है, मगर उसकी आंखें किसी के इंतजार में रास्ता देख रही हैं।

श्रोताओं, सावन का मौसम जहां प्रकृति को हरा भरा कर देता है, वहीं विरह के क्षणों को और भी गहरा बना देता है। बरसती फुहारें, बहती नदियां और घिरती काली घटाएं मन में किसी अपने की याद जगा जाती हैं। दूर बसे प्रियतम की प्रतीक्षा में बीतते दिन और लंबी लगती रातें इस मौसम की एक अलग ही कहानी कहती है।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जिया।

बरसात का मौसम यादों का मौसम भी होता है। खिड़की पर गिरती बूंदे, ठंडी हवा के झोंके और भीगती हुई शामें अक्सर उन लोगों की याद दिला जाती हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बूंद कोई पुराना संदेश लेकर आई हो। मन बार बार उन्हीं बीते पलों में लौट जाना चाहता है जहां साथ था, बातें थी और ढेर सारी मुस्कानें थी। मुझे

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सावन के इस रिमझिम में एक उम्मीद भी छुपी होती है, शायद कोई खबर आए, शायद कोई आवाज सुनाई दे, या शायद अचानक कोई याद ही दिल को सुकून दे जाए। इंतजार कभी आसान नहीं होता, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी पहचान भी यही है कि वह उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता। यही उम्मीद मन को हर मौसम में जिंदा रखती है।

बाहर सावन की रिमझिम है, लेकिन भीतर स्मृतियों का एक लंबा और नीरव मौसम पसरा हुआ है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, फिर भी कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ एहसास दिल से दूर नहीं हो पाते। बीते हुए कल की धुंधली परछाइयां आज भी मन के आकाश पर मंडराती रहती है। एक अनजानी सी कसक, एक अधूरी सी चाह और एक गहरा सा खालीपन पंक्ति में महसूस होता है, और एक गहरा सा खालीपन हर पंक्ति में महसूस होता है। ये गीत उस मौन पीड़ा का स्वर है जो अक्सर आंखों से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से बहती है। यादों का ये बोझ दुख नहीं बल्कि प्रेम की अमिट छाप बनकर जीवन के साथ चलता रहता है।

जिंदगी यादों में ही ठहर जाने वाली है। जब जब बादल गहराएंगे, दिल के खालीपन को छू जाएंगे। कुछ चेहरे धुंध बनकर आंखों में उतरेंगे, कुछ अधूरी बातें फिर से दस्तक देगी। बरसात की हर बूंदों में बीते लम्हों की बरसात की हर बूंद में बीते लम्हों की आहट होगी, और हम मुस्कुराते हुए भी किसी अपने को चुपचाप याद कर रहे होंगे। बारिश की ये बूंदें यूं ही गुनगुनाती रहे, यादें यूं ही महकती रहें, और दिलों में बसी उम्मीदें हमेशा रोशन रहे।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
1: सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

फिल्म संगीत का आनंद अभी आप उठा रहे थे श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम लोक संगीत में जाने का, क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में।

0: बहू जी मम्मी जी इस घर के कुछ नियम हैं जैसे जैसे कि यहां कैश की परंपरा नहीं है तो लेन-देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं ओ जैसे यूपीआई से
1: अच्छा
0: हां और सुनो एक और नियम है
1: वो क्या है मम्मी जी
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी यूपीआई से मिलेगी
1: आम भी ना मम्मी जी
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान
0: हर लेन-देन अब है आसान

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम संध्या वंदन का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या वंदन। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है, शाम के 7 बजने वाले हैं। तो आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का
1: चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायल्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिवनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मिवनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिवनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम पारद्वीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से

0: होकर गुजरेगा और राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वायत्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने अमरीकी हमले में हुए नुकसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 46 ओवर में 2 विकेट पर 315 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अभी आप समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से और अब वक्त है संदेशों का।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज आकाशवाणी आकाशवाणी
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: शाम के 7:10 होने वाले हैं और अब वक्त है आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचारों को सुनने का।
2: मध्य प्रदेश प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
4: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और छतरपुर और पन्ना जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के जगदीशपुर में आयोजित बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह विधेयक कल से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस कानून को लागू करने से पहले 2 महीने तक जनता से प्रतिक्रिया ली गई, 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और समाज के सभी वर्गों से राय ली गई। डॉक्टर यादव ने बताया कि कुल 9,58,000 सुझाव प्राप्त हुए और 93% से अधिक लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि 80% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी समान कानून की मांग की है। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के तहत राज्य में किसी व्यक्ति के एक से अधिक विवाह वैध नहीं होंगे। तलाक के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। महिलाओं और पुरुषों को समान वंशानुगत अधिकार प्राप्त होंगे। लव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण 1 महीने के भीतर कराना होगा। ग्राम स्तर तक विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से विधेयक का समर्थन करने की अपील की है। मंत्रिपरिषद ने 8 अन्य विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने के लिए भी अनुमोदन किया। एक अन्य निर्णय में प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 898,96,00,000 रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। इन संस्थाओं में 1600 नियमित कर्मचारी और 71 संविदा कर्मचारी और 560 आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बैठक के दौरान प्रदेश के 10.54 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 1,460 करोड़ से अधिक की राशि भी अंतरित की। मध्य प्रदेश के 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र कल सोमवार से आरंभ होकर शुक्रवार 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा भवन का अवलोकन किया। इस 5 दिवसीय सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। सत्र में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप सहित अन्य मसौदे पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्षा जल की हर बूंद बचाने और देश भर में जल संरक्षण के अभियान को निरंतर गति देने के आह्वान के अनुरूप कैच द रेन अभियान 4 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जलाशयों की पुनर्जीवन और जल के कुशल उपयोग के लिए निरंतर प्रयास, कृषि को सशक्त बनाने, ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने और भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज झाबुआ में बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों से वर्चुअली चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा आधुनिक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
1: इसलिए टमाटर की प्रोसेसिंग यूनिट, स्वास्थ्य और केचप वगैरह बनाने के लिए भी और इसी के साथ साथ सोलर ड्रायर यूनिट के माध्यम से भी टमाटर को सुखाकर मूल्य संवर्धन किया जा रहा है। झाबुआ का टमाटर आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कई क्षेत्रों में जा रहा है। 19,000 से अधिक हेक्टेयर में फल, सब्जियां, मसाले, पुष्प, औषधि फसलों का उत्पादन भी किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रशासन को पूरी तैयारी के साथ किसानों की सहायता के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए। संसद के मानसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल किए जाने पर विरोध जताते हुए वॉकआउट किया। संसद का मानसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17 21-17 से हराया। पीवी सिंधु जापान ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी है। उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु की यह जीत देशभर के युवा खिलाड़ियों को बैडमिंटन में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। श्रीहरिकोटा से 18 जुलाई को किए गए विक्रम एक यान के प्रक्षेपण में बालाघाट जिले के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ पटले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रक्षेपण के दौरान वे मिशन टीम के साथ मौजूद रहे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एवं उनकी टीम के साथ इसरो में कार्यरत बालाघाट के वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ पटले की मौजूदगी जिले के साथ प्रदेश भर के लिए गर्व का विषय बन गई। डॉक्टर सौरभ पटले की इस उपलब्धि से जिले के युवाओं में विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति नई प्रेरणा का संचार हुआ है। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर और पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के आसपास चार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक टर्फ सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते जबलपुर ग्वालियर संभाग सहित प्रदेश के 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं भोपाल इंदौर उज्जैन समेत कई जिलों में मौसम सामान्य और साफ रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले के लगभग 260 श्रद्धालुओं को आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश की चार दिवसीय तीर्थयात्रा के लिए विशेष ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। शिवपुरी में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छोटे बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से विद्यालय से जोड़ने को लेकर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। कृषि विभाग ने छतरपुर जिले के सभी किसानों से समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। नर्मदापुरम जिले में शनिवार को आयोजित वर्ष की प्रथम विशेष लोक अदालत में 143 लंबित प्रकरणों में से 120 की आपसी सहमति से निराकरण किया गया। झाबुआ महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने पेटलावाद में सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन किया। आगरमालवा जिले के ग्राम मोड़ी स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर 9वीं और के 95 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 2.0 के अंतर्गत ग्राम अलहेड़ में पशुपालकों से संवाद किया गया। शिवपुरी जिले के शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय करेरा में युवा संगम कार्यक्रम 23 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। खंडवा जिले में 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कल जिला पंचायत सभागार में जिला स्तरीय नींव कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और छतरपुर और पन्ना जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं कुछ संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आकाशवाणी एट 90
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है बसों ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है जो पहले 28% था एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: संदेशों को सुनने के बाद अब आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा के लिए।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं मनोज सक्सेना और आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं हमसे जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में पधार चुके हैं, आप उनसे सीधा फोन करके बात कर सकते हैं। हमारे आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जो कि कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से हैं। मित्रों आज का विषय भी आप जान लीजिए, आज का हमारा विषय है बागवानी फसलों में समसामयिक कृषि कार्यमाला, यानी कि बागवानी फसलों में उद्यानिकी फसलों में इस समय जो भी काम किए जाने हैं उन पर आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0755 एसटी कोड लगाने के बाद 2660902, एक और नंबर है 2660903। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: और हमारे श्रोता बिल्कुल आतुर हैं, उतावले हैं फोन करने के लिए और जुड़ भी चुके हैं। जानते हैं पहला फोन किसका है। हेलो हेलो
3: हेलो,
4: नमस्कार सर।
1: नमस्कार Hello. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं
4: जी? सक्सेना जी को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नाम जानना चाहूंगा आपका।
4: मैं जगत सिंह बोल रहा है सर, पिपलिया से।
1: जगत सिंह,
4: तहसील बेगमगंज जिला रायसेन।
1: अरे वाह, तहसील बेगमगंज जिला रायसेन मंदिर पिपलिया से बोल रहे हैं, मतलब है ना?
4: जी जी सर, जी जी।
1: क्या हालचाल है?
4: पहचान गए हम।
1: क्या हालचाल है सर? वहाँ मौसम कैसा है
4: सर? बरसात हो नहीं रही है।
1: क्या बोया है तुमने?
4: सोयाबीन भी है, मक्का भी है, धान लग रही है।
1: बरसात लगभग कितने दिन से नहीं हुई वहाँ जगत सिंह?
4: 10 दिन हो गए सर।
1: 10 दिन हो गए। तो उद्यानिकी का आज हमारा विषय है, आज बात होनी है उद्यानिकी फसलों में जो काम होने उन पर। सवाल क्या है आपका?
4: यही पूछ रहे थे सर, दवा डालने हैं मक्का में, सोयाबीन में।
1: देखो आज का जो विषय है वो उद्यानिकी का है, बागवानी का है। आप सवाल जो पूछ रहे हो वो कृषि का पूछ रहे हो, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि बागवानी से जुड़ा हुआ सवाल पूछिए, पर हमारे विशेषज्ञ जो है वो ऑलराउंडर हैं, आपको जरूर बताएंगे कौन सी दवा डालनी है। सीधे जुड़ो आप, सवाल करो
5: जी। बताइए क्या समस्या है आपकी?
4: सर पानी नहीं गिरा, कचड़े की दवाई डालनी थी।
5: हाँ बहुत अच्छी बात है, और अभी किसान भाई इसलिए बहुत भी चिंतित हैं, तो कोशिश करें कि अभी कचरे के लिए आप एक दो दिन रुक जाइए, क्योंकि अभी अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों का कि एक दो दिन में हल्की बारिश की संभावना है। और साथ ही साथ जैसे कि सोयाबीन में अगर पत्ते पीले पड़ रहे हों और जो नीचे खेत से लग के वो सूख रहे हों, तो उसमें आप एक स्प्रे कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो आप

0: भाई
1: जी,
0: गुल तेर गया और मर गया, दो का चढ़ा मर गया अकेली, गुड़खू नहीं मरी सर।
2: अभी आप एक से दो दिन इंतजार कर ले, थोड़ी सी नमी होने दे, उसके बाद आपको छिड़काव करना है, अभी रुक जाइए।
1: धन्यवाद फोन करने के लिए जगत सिंह जी। सर ये जो बड़ा ज्वलंत सवाल है, समय बारिश हो नहीं रही है और खरपतवार नाशक भी डालना है, कीटनाशक भी बहुत सारे किसानों को डालना है, अब परेशानी यहाँ ये है कि बिन पानी सब सून, करें क्या?
2: बिल्कुल, ये किसान के आगे बहुत बड़ी समस्या है कि इस समय अगर हम ऐसी स्थिति में किसी खरपतवार नाशी दवाई का छिड़काव करते हैं तो वो पूर्ण तरह से खरपतवार कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि अभी किसान ने भी बताया, तो उसमें कुछ कचरा मर जाता है और कुछ नहीं मरता। तो इसीलिए हमें चाहिए कि एक से दो दिन अगर हम इंतजार कर ले, या फिर हल्की चिड़िया से पानी चला के अगर हम छिड़काव कर दे खरपतवार नाशी दवाई का, तो हमारी जो दवाई है वो पूर्ण तरह से काम करती है और जो किसान का पैसा है वो भी वेस्ट नहीं जाता। या एक से दो दिन वो उसका इंतजार कर ले और कुछ उसमें अगर सूखे को सहन करने की क्षमता उसे बढ़वानी है तो उसमें जो है फेरस सल्फेट और चूना, अगर 10 ग्राम 1 लीटर पानी में फेरस सल्फेट और 2 ग्राम 1 लीटर पानी में चूने का स्प्रे करते हैं तो कुछ थोड़ा सा सूखा सहन करने की क्षमता उसमें फसल में आ जाती है। और अगर ये सोयाबीन की बात करते हैं, धान की बात करते हैं, मक्का की बात करते हैं तो दोनों का छिड़काव कर सकते हैं। अगर सब्जियों की बात करते हैं तो केवल फेरस सल्फेट अकेला एक ऐसा है जो इसमें सूखे को थोड़ी सी क्षमता उसके अंदर पैदा कर देता है, लेकिन खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए नमी होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, हमारे अगले श्रोता जुड़ गए हैं, एक बार उनसे भी जानते हैं कहां से कॉल है। हेलो
3: जी, नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, विपिन कटारे जी बोल रहे हैं क्या?
3: हाँ जी बिल्कुल सर।
1: क्या बात है, और विपिन जी कैसे हैं आप? हम भी आपसे आज लगभग मैं सभी से यही जानना चाहता हूँ, आपके यहाँ मौसम कैसा है?
3: मौसम ठीक है सर, आज बादल तो छाए रहे पर बारिश नहीं हुई, थोड़ी बहुत हल्की फुहारें गिरी थी, बाकी बारिश तो नहीं हुई है।
1: बारिश नहीं हुई है, ये अल नीनो जो है बहुत मुश्किल खड़ी करने की स्थिति में दिख रहा है।
3: जी, जैसे दो तीन दिन से ऐसा ही हो रहा है, थोड़ी थोड़ी फुहार तो आ रही है,
1: हालांकि संभावना है आने वाले दो तीन दिनों में बारिश हो सकती है। विपिन जी अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दे दीजिए और सवाल भी लगे हाथ बता दीजिए।
3: जी बिल्कुल, ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। सर मेरे दो सवाल थे आज, कबीसा उद्यान की का है, तो मैं जानना चाह रहा था कि जो अमरूद के पेड़ है उसमें तने में छेद करने वाला कीट है, तो इसके लिए कौन सा दवा का उपयोग करना चाहिए, फिर कौन सा घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये था सर कि गोभी की नर्सरी कितने दिन में तैयार हो, मतलब अच्छी लगा सकते हैं, तैयार हो जाती है?
1: बहुत बढ़िया सवाल।
2: हाँ विपिन कटारे जी से शायद मेरी पहले भी बात हुई है और बहुत अच्छा ये प्रश्न आपने किया है, क्योंकि अभी किसान जो है अमरूद में भी बारिश में इस तरीके की समस्या आती है, तो अगर किसी भी फलदार वृक्ष में उसके तने पे अगर उसकी जो शाखा है वो फट रही है या उसमें छेद हो रहे हैं, तो किसान भाइयों को करना है कि 50 लीटर पानी में एक तो नीला थोता, 4 किलो नीला थोता और 4 किलो चूना, दोनों को इसको जो है रात भर अलग अलग घोलना है, नीले थोते को अलग घोलना है और चूने को अलग घोलना है, और सुबह 50 लीटर पानी में दोनों को एक साथ मिला के और उसमें 50 से 100 ml क्लोरोपाइरीफास मिला के जितने भी फलदार वृक्ष हैं उस पर उसकी 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई तक उसकी तनों पर इसकी लिपाई और पुताई कर देनी है, जिससे जो जमीन से तने के ऊपर कीट चढ़ता है उसमें छेद करता है, बार को काटता है, उसका अटैक नहीं होता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अभी बहुत सारी गोभी की ऐसी वैरायटी आ गई हैं जो जुलाई से अगस्त तक हम लगा सकते हैं। अभी हमारे किसान भाइयों ने प्रारंभ कर दिया है गोभी के बीज की सीडलिंग तैयार करने का प्रोसेस, तो अभी किसान अगर बीज लगाता है और उससे लगभग 25 से 30 दिन में उसकी पौध तैयार हो जाती है, और अगस्त के महीने में 15 अगस्त से पहले पहले वो अपने खेत में उसकी रोपाई कर सकता है, तो एक बहुत अधिक उससे इनकम भी वो किसान हमारा प्राप्त कर सकता है।
1: हमारे अगले श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करें। हेलो हेलो
3: हेलो,
1: आप हमारी आवाज को रेडियो
3: सर जी आ रही है आवाज
1: है ना? नहीं, आप अपनी आवाज थोड़ा सा दूर हो जाइए रेडियो से, ठीक है ना, फिर आप बात।
3: मैं दूर हो गया सर, डीटीएच पे सुन रहा था।
1: जी जी बताएं, जी बताएं।
3: तो मैं कमरे में था, अब मैं बाहर आ गया।
1: जी जी जी जी बोलिए।
3: ग्राम सनोतिया जिला गुना से
1: मांगीलाल जी बोल रहे हैं।
3: जी जी सर जी, धन्यवाद आपको।
1: चलिए मांगीलाल जी, सवाल बताइए।
3: हाँ सर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ
4: पेड़ है

0: टमाटर के लगे हुए हैं,
1: हाँ हाँ,
0: तो उनमें फूल तो आता है लेकिन वो नष्ट हो जाता है।
1: फूल नष्ट हो जाता है।
2: ये मांगीलाल जी को मैं बताना चाहूंगा कि बारिश में जो इस तरीके की समस्या आती है तो उस समय हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक हार्मोन आता है, आप दुकान पे जाएंगे तो प्लानोफिक्स के नाम से वो मिल जाता है, NAA नेफेथिलीन एसिटिक एसिड, प्लानोफिक्स के नाम से वो मिलता है। और आप जो 16 लीटर की टंकी होती है जो पीठ पर टांगकर स्प्रे किया जाता है, उसमें अगर 3 ग्राम दवाई घोल के टमाटर पे, मिर्च पे, बैंगन पे अगर उसका छिड़काव किया जाए तो उसके जो फूल झड़ते हैं या गिरते हैं तो वो फूल अपने आप रुक जाते हैं और सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लानोफिक्स का स्प्रे आप कीजिए, 16 लीटर की टंकी में 3 ग्राम दवाई घोल के पूर्ण तरह से फूल झड़ने से बच जाएंगे।
1: धन्यवाद मांगीलाल जी फोन करने के लिए। अगले श्रोता से हम बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कहाँ से कॉल किए?
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला से।
1: शिमला से राकेश जी, आपकी आवाज तो पहचान में आ रही थी, बहुत दिन बाद मैं शायद इस कार्यक्रम में हूँ तो जी।
3: जी जी जी, तो बहुत दिनों के बाद कॉल किया यार। और मेरा विशेषज्ञ को नमस्कार।
2: जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।
1: राकेश जी, बहुत दूर से आप कॉल करते हैं, शिमला से कॉल करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमें। आज का सवाल बताइए और वहाँ मौसम कैसा, हम ये भी जानना चाहते हैं।
3: जी, अभी शिमला में बादल छाए हैं और मौसम साफ है और कुछ दिन पहले लगातार बारिश।
1: मध्य प्रदेश में चूंकि हम लोग इस बात को लेकर बड़े दुखी हैं, यहाँ बहुत तेज बारिश नहीं होने।
3: हेलो
1: जी, यहाँ मध्य प्रदेश में थोड़ा बारिश की समस्या है। हेलो हेलो,
3: तो मेरा
1: जी जी,
3: मेरा ये है कि हम सेब की बागवानी करते हैं
1: जी,
3: मैं ये प्रश्न कहना चाहता हूँ की एप्पल की जो जो जड़े हैं तो सेब की में कौन कौन से छिड़काव करना चाहिए और घरेलू कौन से छिड़काव करना चाहिए ताकि हमारा जो सेब बिल्कुल फ्रेश हो जाए।
2: हाँ मांगीलाल जी,
1: नहीं नहीं, ये राकेश जी,
2: राकेश जी शिमला हिमाचल प्रदेश से
1: जी।
2: तो ये बहुत ही अच्छा जो है एक प्रश्न है कि सेब में जो कि हमारा नर और मादा, बहुत सारे सेब के ऐसे रहते हैं कि जिसमें जो है नर और मादा फूल भी अलग होते हैं और उसमें जो है काफी फूल झड़ते भी हैं, तो हमारे किसान भाइयों को जो सेब वाले हैं उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस टाइम पे 1 से 2 स्प्रे, अभी मैंने पूर्व में बताया था कि पूरे फूल से अगर वो फल बनाने हैं तो उसमें हमें एक तो जिस समय फूल से फल बनने की क्षमता कन्वर्ट करने का टाइम आता है तो उस टाइम पे मॉइस्चर की कमी ना रखें और बहुत अधिक पानी ना रखें। नंबर 2, उसमें एक प्लानोफिक्स नेफेथिलीन एसिटिक एसिड NAA प्लानोफिक्स की मात्रा अगर हम जो है 16 लीटर की टंकी में यानी कि 4 लीटर पानी में अगर 1 ग्राम उसकी दवाई घोल के हम छिड़काव करते हैं, एक तो जब फूल आता हो तब, और दूसरा मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा साइज सेब का हो तब, अगर 2 छिड़काव हम प्लानोफिक्स के करते हैं तो एक तो वो फूल से फल में कन्वर्ट बहुत अच्छा होता है और दूसरा जो फल झड़ता है वो फल नहीं झड़ता है। साथ ही साथ एक जो है पौधों की जड़ों में जो एक आता है 0050, अगर 0050 को आप जो है 10 लीटर पानी में 20 ग्राम मात्रा घोल के उसके सेब के पौधे में देते हैं तो उससे भी जो है फल काफी अधिक मात्रा में लगते हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए अगर किसान भाई ये करते हैं तो सेब में अधिक उत्पादन ले सकते हैं।
1: धन्यवाद राकेश जी फोन करने के लिए। और अगले श्रोता की तरफ चलते हैं हम।
4: हेलो ग्राम सभा।
1: हाँ भैया, हेलो ग्राम सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं?
4: आज का कौन सा विषय रखो? आज को
1: विषय रखो है अपन ने बागवानी, माने जो कि जो अपने फल सब्जी फूल इनसे जुड़ी जो भी खेती आप कर रहे हो वो के सवाल आप पूछ सकत हो।
4: भैया जा कर हमारे आवरी के पेड़ लगे हैं 5-6।
1: दादा कहाँ से बोल रहे हैं अपन?
4: बमहरी ढूंढा जिला सागर से, गुड्डू 24।
1: गुड्डू 24, वाह वाह वाह वाह। आवरी कितने बड़े हो गए आपके?
4: पेड़ तो हो गए कम से कम 8-10 साल, 10-8 साल के हो गए।
1: 10 साल के हो गए?
4: हाँ, तो 2 पेड़ वो मैं जो सबसे बड़े और होते हैं वे फरा थे और उनके माने फल तुरंत ही झड़ जाता अपने आप।
1: अच्छा, और कितने पेड़ हैं?
4: है?
1: पेड़ कितने हैं
4: अपने? लगे हैं 4 पेड़, तो 2 पेड़ जो छोटी और ये विधिवत फरत है, बड़े फल होते हैं पूरे गिर जाते। 2 पेड़ अलग।
1: आप सुनो, समाधान लो आप।
2: गुड्डू जी, अगर ध्यान दिया हो आपने जो बड़े फल जो आपके नीचे गिरते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत निशान भी जरूर रहते होंगे फलों पे, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जिस टाइम पे फल थोड़ा सा अपना साइज छोटा हो उस टाइम पे एक आता है क्लोरोफायरीफास, एक दवाई कीटनाशक आता है, प्लस उसके साथ आता है एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा मिलाना और उस आंवले के पौधे में 2 बार आपको छिड़काव करना है। एक तो जब उसका साइज छोटा हो और एक थोड़ा सा उसका जो है साइज नींबू से हल्का सा छोटा सा वो बना हो। 2 स्प्रे अगर आप उसके करेंगे तो फल आपके झड़ने से रुक जाएंगे और साथ ही साथ जो आप वो जो घोल बनाएंगे उस घोल को उसके जड़ों में भी देना है जिससे वो आंवले के फल पूर्ण तरह से रुक जाएं और वो झड़े ना।
1: समझ गए आप, दवाई दोबारा बताएं।
2: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
4: जी,
2: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, एक पौधे में लगभग 10 लीटर पानी लगेगा।
4: जी जी जी,
1: छिड़काव करो और फिर बढ़िया आंवले फर है हम खा गया।
4: जी जी, चटनी खा है अचार। जी नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। पर उससे पहले सर, अभी जो ये सवाल जितने आए हैं, इन सारे सवालों में हम जो देख रहे हैं वो ये है कि किसान हमारे जो आज का विषय है उस पर नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि हमारा आज का विषय वो यही है कि हम इस समय आप जो नर्सरी लगा रखी है या बारिश की जो फसलें आपने लगा रखी हैं उद्यानिकी की, सब्जियों की, फूलों की, उससे रिलेटेड या उससे संबंधित सवाल हमारे श्रोता पूछे, तो बहुत अच्छा है। स्वागत है आपका। हेलो,
5: नेत्राम खोजा बोल रहा जी।
1: नेत्राम जी कहाँ से बोल रहे हैं?
5: कोठिया से बोल रहा जी।
1: कोठिया कहाँ है? जो
5: जो कोठिया गाड़लवाड़ा के पास।
1: गाड़लवाड़ा के पास कोठिया। आपने पहली बार फोन लगा है?
5: मेरी सोयाबीन में जो पत्ता से छेदा हो रहा है, पत्तों में,
1: सोयाबीन में पत्तों में छेदा हो रहे हैं। नेत्राम जी, आज को जो विषय है वो है उद्यान की फसलों को, है ना, बागवानी को। मानो फिर भी सोयाबीन के पत्ता है, क्योंकि सबकी समस्या सर इस समय सोयाबीन ही है। और जी जी सुनो आप।
2: हाँ नेत्राम जी, आप जो है उसमें 2 से 3 दवाई आती हैं, उनका कोई भी अगर बाजार में मिल जाए तो उसका छिड़काव कर सकते हैं। एक आता है इमीडा क्लोप्रिड प्लस, उसके एक ही शीशी में दोनों दवाई आती है, इमीडा क्लोप्रिड और बीटा साइप्लोथिन, या तो ये मिल जाए, या आपका आता है थायोमिथेक्साम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन। इनमें से कोई सी भी अगर एक दवाई आपको मिल जाए तो उसका छिड़काव आप अपनी सोयाबीन में कर सकते हैं। उसकी वो इल्ली भी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी और जो उसमें माहू मच्छर है वो भी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगे। अगर ये दवाई नहीं मिलती है तो एक क्लोरोपायरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन आती है, तो इन तीनों दवाइयों में से कोई भी एक दवाई मिल जाए तो उसे लेके आप अपनी सोयाबीन में उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो पूरी तरह से उसकी जो इल्ली है वो कंट्रोल हो जाएगी।
1: धन्यवाद नेत्राम जी फोन करने के लिए, कोठिया से ये फोन था। अगले श्रोता भी हमसे जुड़े। उससे पहले सर एक सवाल, हम जो भी हमारे अभी लिसनर्स सुन रहे हैं उनके मन में रहा होगा कि जो अल नीनो की बात बार बार आती है, बारिश कम हो रही है और औसत बारिश कम होने का अनुमान है, ऐसे में उद्यानिकी से जुड़े हुए किसानों के लिए क्या सलाह देंगे आप?
2: हमने अभी जो है 1 जून से 30 जून तक भी हमने खेत बचाओ अभियान में सभी किसानों को ये हमने सलाह दी थी कि जो अल नीनो इफेक्ट की वजह से हमारे किसान भाई हैं वो प्रभावित होंगे, तो वो उसका असर हमें दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमारे किसान जो सब्जी और फल फूल की खेती करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सुझाव हम देना चाहेंगे कि अभी किसान भाई अगर ड्रिप जो टपक सिंचाई तकनीक होता है उसके माध्यम से अगर खेती करता है तो वो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ले सकता है। अगर जिसके पास टपक सिंचाई तकनीक नहीं है और वो बिना उसके खेती करता है तो उसके लिए किसान भाइयों को समय समय पे 2-3 स्प्रे ऐसे करने हैं जो उसके सूखे को सहन करने की क्षमता दे। और कोशिश ये करनी किसान भाइयों को कि जब पौधा लगाए तो पौधे को नाली के माध्यम से लगाए जिससे पानी उसमें सिंचित रहे, ऐसा ना हो कि वो समतल खेत पे लगा दे और जैसे ही पानी दे उसका वो लीच आउट हो जाए या उड़ जाए। अगर वो नाली के किनारे पे पौधा लगाएगा तो कुछ पानी जो देगा उस नाली में थोड़ा सा संचित रहेगा। और साथ ही साथ किसान भाइयों को राय देंगे हम कि जैसे ही आप किसान भाइयों को नमी खेत में हो तभी पौधा लगाए, अभी जल्दबाजी ना करें, अभी बारिश आने की संभावना है उसके बाद ही अपने खेत में रोपाई करें।
1: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
6: हेलो,
1: हाँ जी स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में, कहाँ से बोल रहे हैं?
6: नमस्ते सर जी।
1: नमस्ते जी।
6: पहला सवाल तो मेरा ये था,
1: नाम तो बता दीजिए।
6: जी नाम तो बता रहा हूँ मैं, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर मनोज नामदेव
1: जी है। वही देखिए मनोज जी, आप तो इतने पुराने श्रोता हैं, अपना नाम पहले बता दें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम किससे बात कर रहे हैं।
6: बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले तो क्योंकि समय की बचत, नाम नाम से क्या है, अपना जो सवाल है वो कर लेते हैं, ये पहले नाम तो ठीक है बता देता हूँ सर।
1: ये भी सही है, सवाल बताइए। जी
6: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय की बचत, टाइम कम बचा, श्रोता लाइन पर बहुत है। पहला सवाल मेरा ये है सर कि भिंडी में क्या हो रहा है सर, अभी 8-10 दिन से थोड़ा सा कोकरा रोग सा लग रहा है, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, 8-10 दिन से समस्या आ रही है। दूसरी समस्या ये है कि नींबू है, नींबू छोटे छोटे होके गिर जा रहे हैं, बड़े जो साइज होता है नींबू का वो साइज नहीं हो पा रहा। दो सवाल है मेरे और मैं आपके सवाल को ध्यानपूर्वक रेडियो सुन रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत से श्रोता लाइन पर है।
1: जी जी मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना
2: मनोज जी आपके दोनों सवाल हैं, पहला सवाल जो आपकी भिंडी में समस्या है, तो भिंडी में दो कीड़े पे बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, एक तो जैसिड होता है जो उसमें हरा तेला जिसको बोलते हैं, और दूसरा थ्रिप्स होता है जिसकी वजह से पत्ते कुकड़ते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए एक फिप्रोनिल दवाई आती है, फिप्रोनिल 80% WG, उसे अगर 2 ग्राम 16 लीटर वाली टंकी में स्प्रे अगर घोल का छिड़काव करते हैं तो भिंडी में पूरी तरह से उससे आप जो है निजात पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ नींबू में जो आपकी फल की समस्या आएगी, वो फल झड़ता है, तो उस फल को झड़ने से रोकने के लिए एक तो पानी को थोड़ा सा आप कंट्रोल करके चलिए, और दूसरा अभी मैंने पहले भी बताया था, सुना होगा आपने कि प्लानोफिक्स एक दवाई ऐसी आती है जो फूल से फल को कन्वर्ट करती है और फल को झड़ने से बचाती है, तो उसे आप नेपथलीन एसिटिक एसिड को 4 ग्राम पानी, 4 ग्राम दवाई को 16 लीटर पानी में अगर घोल के छिड़काव करते हैं तो नींबू से जो आपके फल गिर रहे हैं वो फल भी रुक जाएंगे और उसकी जो है अच्छी गुणवत्ता भी आएगी। साथ ही साथ एक छिड़काव और कर सकते हैं 0050 का, जो आप 10 लीटर पानी में 4 ग्राम दवाई घोल के उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे भी आपके जो फल झड़ने की समस्या वो काफी हद तक रुक जाएगी।
1: धन्यवाद फोन करने के लिए, और अगले श्रोता से बात कर लेते हैं। हेलो।
7: हेलो,
1: स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में।
7: थैंक यू सर, आकाशवाणी परिवार की पूरी टीम को मेरा सादर नमस्कार।
1: बहुत बहुत नमस्कार, आप कहाँ से बोल रही
7: हैं? हेलो
1: जी जी, आपने फोन कहाँ से किया है? हेलो हेलो
7: हेलो
1: जी जी, आवाज नहीं आ रही है।
7: हेलो,
1: संपर्क नहीं हो पा रहा है सर। जहां हम बात कर रहे हैं बार बार कि कम पानी है या फल झड़न हो रहा है, फूल झड़न हो रहा है, ये जो फल और फूल झड़न हो रहा है क्या ये अल्प वर्षा के कारण हो रहा है?
2: ये मनोज जी बहुत अच्छा एक किसानों का सवाल भी है और ये हमारे दिमाग में भी एक बहुत चीजें चलती हैं, जो कम बारिश की वजह से जब हमारा फूल आता है और फूल वाली कंडीशन में जब पानी की कमी आती है तो वो फूल ऑटोमेटिक झंडे लगता है। तो एल नीनो इफेक्ट की वजह से जब पानी की कमी हुई है उस टाइम पे जब फूल आ रहा हो, तो फूल आने से पहले जब स्ट्रेस पौधा लेता है तब पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फूल से जब फल कन्वर्ट होता है तो उस समय पौधे को नमी की जरूरत पड़ती है। तो अभी चूंकि जो एल नीनो इफेक्ट की वजह से हमारे पानी कम गिर रहा है तो उसकी वजह से भी सारे सब्जियों में और फलों में वो फूल झड़ने की समस्या आ रही है।
1: जी जी।
2: और साथ ही साथ जो हमारे जैसे सोयाबीन है, धान है, तो उसमें भी काफी समस्या हमें देखने को आ रही है। तो किसान भाइयों को यही सलाह दी जा रही है कि जो कम दिनों वाली प्रजातियां हैं अभी किसान उसको ही चयनित करे, नहीं तो किसान को आने वाले समय में और भी समस्या देखने में आ सकती है।
1: श्रोता जुड़ गए हमसे, बात करते हैं। हेलो हेलो
8: जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
8: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। सर मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ जिला सीहोर से।
2: जी नमस्कार
1: नरेंद्र जी, कैसे हैं?
8: सर बढ़िया है।
1: आपका सोयाबीन ठीक है?
8: हाँ सर, बारिश नहीं हुई 12-13 दिनों से, वैसे ठीक है फसल पर अब पानी की जरूरत लग रही है।
1: अब पानी की जरूरत लग रही है। और आज अभी आपने अगर समाचार सुने होंगे तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन में मौसम अभी सामान्य ही रहने वाला है नरेंद्र जी।
8: हाँ 2-3 दिनों तक खुला रहेगा ऐसा बताया है।
1: हाँ तो सावधान तो हो ही जाइए। और आज का आपका सवाल भी बताइए ना।
8: सर मेरा सवाल ये कि हमने गोभी की नर्सरी लगा रखी, सर उसमें पौधे की दूरी कितनी लगाना चाहिए कतार से कतार में?
1: बहुत अच्छा सवाल है।
2: इसका मतलब आप पूछ रहे हैं कि पौधे की जब हम रोपाई करेंगे तो कितनी दूरी पे हम रोपाई करते हैं? तो जब गोभी की हम रोपाई करनी चाहिए तो हमें 1-1 फीट पे उसकी रोपाई करनी चाहिए। क्योंकि हमें अगर पौधे को ज्यादा घना लगा देते हैं, पास पास लगा देते हैं, तो उसमें डायमंड बैक मोथ की

0: समस्या बहुत ज्यादा आने लगती है। तो इसलिए आप एक एक फीट पे पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी रखते हुए और उसे आप जो है रोपाई करेंगे तो उसका फूल भी अच्छा बनेगा, उसमें बीमारी भी कम आएगी और उत्पादन भी अच्छा होगा।
1: धन्यवाद राकेश जी फोन करने के लिए। नरेंद्र दांगी जी का फोन था ये और अगले श्रोता भी हमसे जुड़ रहे हैं। सर यहाँ एक चीज और है कि नर्सरी जो किसान भाई अभी लगा रहे हैं क्या रुक जाए थोड़े समय के लिए?
0: नहीं, नर्सरी जिसके पास पानी की उपलब्धता है तो नर्सरी के लिए उसे रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो किसान अभी जल्दबाजी कर रहे हैं खेत में रोपाई के लिए फसलों का सब्जियों का, तो उन्हें अभी रुकना पड़ेगा जब तक बारिश ना आ जाए, पानी ना गिर जाए। क्योंकि किसान भाई बहुत सारों ने टमाटर लगाया है तो अभी हमारे पास बहुत फोन आ रहे हैं तो उनके टमाटर में और बैंगन में बहुत समस्या आने लगी है, तो जो रोपाई कर रहे हैं उनको रुक जाना चाहिए और जो नर्सरी लगा रहे हैं उनको नर्सरी लगा देनी चाहिए, क्योंकि पानी उनके पास नर्सरी के लिए इतना रहता है, वो 15 से 20 दिन 25 दिन लगते हैं, तो उस इतना हमारा जो है सामान्य शुरू हो, बारिश आ जाएगी।
1: हमारे आखिरी कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी, हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी बोलिए।
2: मैं रायजिंग से बोल रही हूँ
1: जी। नाम बताएंगे आप अपना?
2: सर हमारी तुलसी के पौधे में बहुत वो लग रहा है।
1: तुलसी की पौधी में क्या लगा हुआ है?
2: कीड़ा लगा हुआ है कि पत्ते बहुत झड़ रहे हैं।
1: पत्ते झड़ रहे हैं, आप कहाँ से बोल रही हैं? पता तो बताइए हमें, पता तो।
2: रायसेन से।
1: रायसेन से बोल रही हैं जी। नाम बताएंगी
2: जी?
1: नाम क्या है आपका?
2: नाम है मेरा उमा।
1: उमा, उमा जी का फोन है। अच्छा लगता है नाम जानने के बाद हमें जल्दी से सर।
0: हाँ उमा जी, जो है तुलसी में अभी समस्या काफी आने लगी है किसानों के, बारिश में कम की वजह से पत्ते भी झड़ रहे हैं, तो कोशिश करें उसमें अगर जो नीम का तेल आता है तो उसको 200 ppm और 400 ppm नीम का तेल, उसमें 5 ml 1 liter पानी में अगर आप करके नीम तुलसी पे स्प्रे कर देते हैं तो उससे तुलसी के पत्ते झड़ने से रुक जाएंगे, और उसमें पानी कम कीजिए जिससे तुलसी के पत्ते ना झड़े।
1: धन्यवाद सभी कॉलर्स को फोन करने के लिए, और मैं अपने सभी श्रोताओं को यह बतला दूं कि आज हमारे जो पूरा इस कार्यक्रम में तकनीकी रूप से सहयोग हमें मिल रहा था, उद्घोषिका के रूप में मधुर मीठी सुरीली आवाज लेकर हमारे साथ थी सरिता सिंह, प्रसारण सहायक के रूप में प्रियंका चंसोरिया हमारा सहयोग कर रही थी, कंट्रोल रूम से हमें सहयोग मिल रहा था के सिंह और राजू वासे का, कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा का था, सूत्रधार के रूप में आपके साथ था मैं मनोज सक्सेना, और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ थे डॉक्टर मुकुल कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से हमसे जुड़े थे। सर चलते चलते अगर एक मिनट में कोई ऐसी बात जो रह गई हो बताना जरूरी थी
0: किसान भाइयों को, अभी मैं एक मिनट में बताना चाहूंगा कि अभी कोई भी किसान जल्दबाजी ना करें, खरपतवार नाशी दवाई के लिए भी और सब्जियों की रोपाई के लिए भी, और जो किसान धान में किसान लेट हो रहा है और जल्दबाजी में धान लगा रहे हैं उसमें भी अभी 2 से 3 दिन वो इंतजार कर ले, और पानी जब हमारा गिर जाए तो उसके बाद ही उसकी तैयारी करें, नहीं तो किसान भाइयों की जो है समस्या काफी बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि जो वैरायटी कम दिनों वाली है उनका चयन करके किसान भाइयों को अपने खेत में सब्जियों की, फलों की और धान्य फसलों की रोपाई करनी है, नहीं तो किसान आने वाले समय में गेहूं में लेट हो जाएगा और उसमें किसान हमारा ना बारिश का रहेगा और ना रवि सीजन का रहेगा। इसलिए किसान भाइयों को सलाह देंगे हम कि जो कम दिनों वाली वैरायटी है उस पर जाएं, और जो रोपा जिसका 1.5 महीने 2 महीने का हो गया है, बहुत किसान भाइयों का धान का रोपा बड़ा हो गया है, तो उसे कोशिश करें कि उस 1.5 से 2 महीने रोपे वाले को रोपे को ना लगाएं, नहीं तो उसके कल्ले नहीं निकलेंगे या कम निकलेंगे और उसका पैदावार कम होगी। तो किसान भाइयों को सारा इस एक इसमें जो है सार है कि जो किसान भाई हमारे खेती करने के लिए अभी जा रहे हैं तो उसमें पानी का थोड़ा सा इंतजार करें, कम दिनों की वैरायटी पे जाएं, और जो स्प्रे हैं जो मैंने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड और चूने का, इसका छिड़काव करते हुए किसान भाइयों को आगे खेती करनी है, ताकि जो है किसान अपना जो है उससे एल नीनो इफेक्ट के कारण जो नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका सर, आपने बहुत सटीक तरीके से आपने जानकारी दी है, और हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे किसान भाइयों ने फोन पर बात की है उन्हें उनके समाधान मिल गए होंगे, और आगे भी किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है कि इस तरह के कार्यक्रम प्रति रविवार हम जो है ग्राम सभा के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं। हर बार नया विषय होता है, नए विशेषज्ञ होते हैं। जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम से और हमें फोन करते रहिए। अब विदा दीजिए, मनोज सक्सेना को स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा आकाशवाणी भोपाल से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
3: नमस्कार श्रोताओं, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसरो के दशकों की उपलब्धियों के साथ अब प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स भी अंतरिक्ष क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 प्रक्षेपण ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमताओं को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत का स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की अर्थव्यवस्था, नवाचार और आत्मनिर्भरता को किस दिशा में ले जा रहा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। डॉक्टर काले, आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की टीम से जुड़कर उन्हें बधाई दी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
5: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। स्काईरूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया।
3: डॉक्टर काले, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम होता क्या है और पिछले कुछ वर्षों में भारत में इसके तेजी से उभरने की प्रमुख वजह क्या है।
4: जब से इसरो ने काम चालू किया था तब से एक देखा था कि सभी काम जो है उसकी जो संस्था है, जो सेंटर से वहां नहीं हो सकता है। कुछ तो काम जो है जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है, वो सब जो अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां होना चाहिए। और इसी से लेकर हमारे जो रॉकेट्स है, लॉन्च व्हीकल्स है, उसके जो बड़े जो सामान होते हैं वो सब इंडस्ट्री में ही बनते हैं। और ये जब अपने इंडस्ट्री में बनते थे तो वो भी देखा था कि बहुत सारे उसके लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं, सिस्टम्स लगते हैं, मैकेनिकल जो होता है वो सब काम इंडस्ट्री में तो होता ही है, मगर छोटी छोटी इंडस्ट्री ने भी इसमें हाथ भर लगाने के लिए प्रयत्न किए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा लॉन्च व्हीकल जो है वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया और उसका कल प्रक्षेपण बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है और वो अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में जाकर स्थित हुआ है। तो पूरे लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए जो भी कुछ इंडस्ट्री लगती है, जो भी कुछ टेस्टिंग करना पड़ता है, वो सभी काम ये प्राइवेट इंडस्ट्री ने किया है। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम यानी पहले से लेकर अंत तक सब जो काम है वो बाहर हो सके। और मुझे खातरी है कि ये काम इस तरीके से करने के लिए सिर्फ मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नहीं।

0: फिर बाकी सब इंडस्ट्री जो है इसके लिए काम करने वाली उसका भी उसमें हाथ भर होता है और इसको ही हम स्पेस स्टार्टअप की इकोसिस्टम कह सकते हैं।
1: जी, आपने अभी स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 प्रक्षेपण का उल्लेख किया है और ये अभी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या इस सफलता को हम मान सकते हैं कि इससे भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी?
0: ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है और इसे प्रेरणा लेकर और भी बहुत सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं। मुझे खातरी है कि आजकल जो विद्यार्थी है वो भी इसमें आगे जाकर भाग ले सकते हैं। एक बहुत पहले मैंने यहाँ देखा था कि पुणे में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वहाँ के सब विद्यार्थियों ने मिलकर एक उपग्रह भी बनाया था। ऐसे जो उपक्रम होते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है और खातरी मिलती है कि जो काम चालू किया था वो आगे भी अच्छी तरह से चालू रह सकेगा।
1: जी, और हमने देखा है जैसे पिछले कुछ समय में जो हमारी अंतरिक्ष नीति है देश की, उसमें कई तरह के सुधार आए हैं जिनसे स्टार्टअप्स के लिए ये वातावरण तैयार हुआ है और वो अच्छा काम भी करके दिखा रहे हैं। क्या जो इस तरह के सुधार हैं, जो नीतिगत सुधार हैं, वो हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने में सहायक साबित होंगे?
0: इस तरीके की जो नीति है उसे हम आगे जाकर अगर जो हमारे देश के लिए नहीं लेकिन और भी देशों के लिए उपग्रह बना सकते हैं, उनके लिए रॉकेट्स बना सकते हैं, उनके उपग्रह जो वो बनाते हैं वो हम अपने यहाँ के लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके उनको अंतरिक्ष में भी भेज सकते हैं। मुझे खातरी है कि अभी जो प्रेरणा मिलेगी लोगों को तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छा काम कर सकेंगे।
1: जी डॉक्टर काले, ये आज भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स जो हैं, लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट निर्माण, पृथ्वी अवलोकन, संचार, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपको इनमें सबसे अधिक संभावनाएं किस क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं?
0: एक तो मुझे लगता है कि जो इसरो ने चालू किया था कि पहले SLV तैयार किया, उसके बाद में ASLV तैयार किया, PSLV तैयार किया, अगर ये सब एक एक करके बहुत बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल हो गए तो उसके बाद अगर जो कोई छोटा उपग्रह है उसके जो लॉन्च करना है तो उसके लिए एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाया है इसरो ने। अगर ऐसे लॉन्च व्हीकल जो है, जो छोटे लॉन्च व्हीकल है जिनका उपयोग बहुत जल्दी से हो सकता है, ऐसे लॉन्च व्हीकल हम अपने देश के लिए नहीं लेकिन बाकी सब देशों के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी बना सकते हैं और उसमें ही मुझे लगता है कि हमें और प्रगति होगी।
1: जी, और इसके अलावा अगर हम देखें तो अब तक जैसा भी हमारे यहाँ चल रहा था, अगर कुछ साल पहले तक अंतरिक्ष के सभी कार्यक्रम या उससे जुड़ा हुआ जो कुछ क्रियाकलाप था वो इसरो तक सीमित था। अभी जैसा हम बात कर रहे हैं कि अब निजी कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, सब इसमें शामिल हैं, सबके लिए रास्ते खुल गए हैं। हम अगर भविष्य की बात करें, निकट भविष्य की, अगर एक दशक की या उससे कुछ अधिक, तो इस बदलाव से जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम है क्या उनको गति मिलेगी, उनको तेजी मिलेगी?
0: प्राइवेट इंडस्ट्री ने अभी जो करके दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है लेकिन इससे आगे जाकर जो भी कुछ सामान बना सकते हैं उसका टेस्टिंग करना जो है उसके लिए अभी भी इसरो की मदद लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी कुछ टेस्टिंग करना है वो भी अगर जो कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आगे जाकर कर सकेगी तो इसमें बहुत ही ज्यादा सुधार होगा। और ऐसे टेस्टिंग के लिए जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों मिलकर जो कर सकेंगे तो और भी अच्छा होगा।
1: जी, और अक्सर कहा जाता है कि आने वाले समय में स्पेस डेटा एक नई अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा, एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। तो अगर हम कुछ क्षेत्रों पर गौर करें जैसे कृषि क्षेत्र है या डिजास्टर मैनेजमेंट है या शहरों की योजना बनाने, शहरी नियोजन है और राष्ट्रीय सुरक्षा है, इनमें ये जो चार क्षेत्र हैं इनमें स्पेस डेटा से कैसे हमें सहायता मिल सकती है?
0: डिजास्टर मैनेजमेंट की जो हम जो बात करें तो जब भी चाहे तब अगर जो उपग्रह को जो लॉन्च करना होगा तो इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री का ये छोटा उपग्रह बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें बहुत आगे जाकर बहुत ही काम कर सकते हैं। अगर जो शहरी व्यवस्था है उसकी जो व्यवस्थापना करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपग्रह जो मिल सके तो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।
1: जी, और बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ कृषि भी, तो क्या खेतीबाड़ी में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है?
0: हाँ, हो सकता है। जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट से ऐसे सैटेलाइट जो हम बना सकेंगे और भी ज्यादा तो उसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकेंगे क्योंकि हर रोज अगर जो कोई हमें जो इमेज मिल सके कोई भी खेती क्षेत्र की तो उससे हमें ज्यादा जानकारी मिल सकती है और वो जानकारी जो है वो सब अपने जो एग्रीकल्चरिस्ट है उन तक जो पहुंच सके तो बहुत अच्छा होता है। तो ये पहुंचने के लिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जरूरत है वो भी अच्छी तरह से आगे जाकर बना सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री, और उसका उपयोग करना जो है वो भी वो कर सकते हैं
1: जी। और डॉक्टर काले, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां रही हैं, भू राजनीतिक कई जगह तनाव रहे हैं, कई जगह सैनिक कार्रवाई चल रही है पूरी दुनिया में, ऐसे में सैटेलाइट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, इसकी भूमिका पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
0: ऐसे जो सैटेलाइट्स है जो हमें इसके लिए काम में ला सकते हैं, तो ये सैटेलाइट्स जो है वो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे सैटेलाइट्स छोटे जो सैटेलाइट्स है बड़े भी सैटेलाइट्स है ऐसे हम बना सकते हैं, और प्राइवेट इंडस्ट्री का जो सहभाग आगे लेकर जो कर सके तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ सैटेलाइट्स बड़े बनाने से ये काम नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत ही सारे और भी तरीके के उपग्रह की जरूरत होती है, और ये उपग्रह लॉन्च भी करना जल्दी से होता है, तो इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री जो है उसका बहुत ही सहभाग होगा
1: जी। और भारत अभी वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे की ओर अग्रसर है भी, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी, और हमारे सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं?
0: इसके लिए जो सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि सबको अभी पता है कि भारत ये कर सकता है, लेकिन उनको जो जल्दी से कुछ करना होगा तो हम कर सकेंगे कि नहीं, इस पर ये लोगों का विश्वास नहीं है, तो वो विश्वास प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होगा। जो भी कुछ काम कर सकते हैं वो अच्छा करना है, टाइम पे करना है, और जो उसके लिए जो कुछ फंडिंग लगेगा वो भी हम मिला सकते हैं, अगर इसके लिए अच्छी तरह से ये काम करना होगा और जो टाइम सर करना होगा।
1: जी, हम जानते हैं कि स्पेस सेक्टर में नवाचार यानी इनोवेशन के लिए सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि निवेश की भी जरूरत होती है, अनुसंधान भी चाहिए, और उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग भी जरूरी है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत को अभी और क्या कदम उठाने चाहिए?
0: एक तो मैंने भी इतने सालों से देखा है कि रिसर्च के लिए जो फंडिंग लगता है वो फंडिंग कम की हो रहा है, जो अपने यहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक जाकर पहुंचना चाहिए, अगर जो वहां तक जो ये पहुंच सके अच्छी तरह से तो ये इनोवेशन का काम और भी अच्छी तरह से आगे चल सकेगा
1: जी।
0: इसके लिए जो भी कुछ रिसर्च फंडिंग है इसरो की है, दूसरे डिपार्टमेंट की भी है, डिफेंस की भी है, तो उन्हें अपने यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है उनके यहाँ जाकर अच्छी तरह से काम, यूनिवर्सिटी में जो हो सके तो उसके लिए विद्यार्थी भी मिल सकते हैं, काम करने के लिए लोग भी मिल सकते हैं, और ये लोगों को जो प्रेरणा मिले तो वो आगे जाकर ये जो स्पेस इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ही हाथ भार लगा सकते हैं
1: जी। और दुनिया में हम लगातार देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में गतिविधियां तो काफी बढ़ गई हैं, कई देश इसमें बहुत सक्रिय हैं, इसके साथ साथ अंतरिक्ष में भी नई चुनौतियां दिख रही हैं, स्पेस में जैसे कचरा बढ़ गया है, साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां आ रही हैं, और रेगुलेशंस से जुड़े हुए भी कई चैलेंजेस हैं। तो अभी हम भारतीय स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होंगे आने वाले दिनों में?
0: उनके लिए एक तो आगे जाकर जो देखना है कि हमें जो दूसरे के देशों के लिए हम कुछ बना सकते हैं तो वो अच्छी तरह से बनाना है, ये तो सही है, मगर उनके रूल्स और रेगुलेशंस को का भी पूरा पालन होना चाहिए। जैसे हम मानते हैं कि अपने देश के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसका तो पालन ये करेंगे, लेकिन वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनका अच्छी तरह से समझ पहुंचना चाहिए, और इसके लिए अगर जो यूनिवर्सिटीज जो है वहाँ जो ऐसे कुछ प्रोग्राम हो कि कौन से देश में कौन से तरीके रूल्स एंड रेगुलेशन से इंटरनेशनल स्टडीज जिसे कह सकते हैं उसका उपयोग करके हमारे स्टार्टअप्स और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैसी तस्वीर देखते हैं? क्या भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्पेस इनोवेशन हब के रूप में उभर सकता है?
0: हाँ, बन सकता है, मैंने अभी जैसे कहा तो ये इसके लिए जो भी कुछ करना है काम उसके लिए रिसर्च लेबोरेटरीज चाहिए और जगह चाहिए, और ये जगह जो है वो एक आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज तक जो पहुंच सके तो ये अच्छी तरह से काम आगे हो सकता है।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने अभी सुना, भारत का उभरता स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। डॉक्टर प्रमोद काले जी, इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है EIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रस्तुति है आकाशवाणी छिंदवाड़ा की।

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, देश की तरक्की का रास्ता हमारे गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है। ग्रामीण भारत की समृद्धि हमारे राष्ट्र के विकास का मुख्य आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और स्थायी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को, विशेषकर महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। तो आज के कार्यक्रम डगर विकास की में हम जानेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। कहा जाता है कि जब आप एक व्यक्ति को सशक्त करते हैं तो केवल एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन जब आप ग्रामीण भारत की महिला शक्ति को सशक्त करते हैं तो पूरा समाज और राष्ट्र प्रगति करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गाँव की महिलाओं में, उनके परिवारों में किस तरह का सकारात्मक बदलाव ला रहा है और इस योजना की कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी दे रही हैं रेखा हिरवार, जिला परियोजना प्रबंधक, जिला छिंदवाड़ा।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्वसहायता समूह के माध्यम से उन्हें संगठित करना और उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के पश्चात उनके पसंद के अनुसार आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।
2: इसमें स्वरोजगार शुरू करने के लिए क्या प्रशिक्षण दिया जाता है और युवाओं को भी जोड़ा जाता है क्या?
1: हाँ, इस योजना में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में उनको, अगर वो दीदी कोई आजीविका के माध्यम से कोई गतिविधि करना चाहती है तो उनको भी हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। जिला स्तर पे हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर, जिसको हम CTC कहते हैं। ये हमारा तामिया में है और ये CTC को हमारी जो CLF है वो CLF ही उसको संचालित करता है और उसमें विभिन्न प्रकार की लाइवलीहुड से संबंधित, उनके सशक्तिकरण से संबंधित, लेखा संधारण और विभिन्न प्रकार की उनको गतिविधियों से संबंधित उनको वहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। और जैसा कि आपने एक प्रश्न पूछा मुझसे कि स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए क्या है, तो ग्राम के जो हमारे बेरोजगार युवा युवतियाँ हैं जो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में रहते हैं, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसा हमारा की एक RCT है हमारा जिला लेवल पे और सेंट्रल बैंक की, उनके स्वरोजगार के लिए वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रेडों में ट्रेनिंग होती है, ब्यूटी पार्लर हो गया और क्या बोलते हैं मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया और उनका लघु उद्यमिता से संबंधित जैविक सब्जी उत्पादन, विभिन्न प्रकार के ऐसे विषयों से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद में वो अपने स्वरोजगार को स्थापित कर देते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विकासखंड स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्राइवेट कंपनियां आती हैं और उनका साक्षात्कार होता है। वो युवाओं का चयन करके और उनको भी प्लेसमेंट दिया जाता है और वो अच्छे से मतलब कंपनियों में जाके अभी अपना नौकरी करते हैं।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम संगठन भी काम कर रहे हैं, तो इनकी क्या भूमिका है?
1: ये ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत में हमारे जो ब्लेज हैं, ब्लेज लेवल पे भी हमारे ग्राम संगठन बने हुए हैं। इस ग्राम संगठन में कम से कम 3 SHG और अधिकतम 20 SHG ये हैं जो संगठित रूप से ये कार्य करते हैं। इस ग्राम संगठन के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जाता है। इसमें समूह की जो दीदियां बहनें हैं वो अपने अनुभवों को आदान प्रदान करती हैं और सीखती हैं।
2: इस मिशन में डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन बैंकिंग को भी महत्व दिया जा रहा है क्या?
1: यस, हाँ, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको हम लोग वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं और जो भी उनका जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, वो दीदियां अपना मतलब चेक के माध्यम से ही पेमेंट करती हैं और चेक के माध्यम से या RTGS हो गया या फिर जैसे कि विभिन्न प्रकार के हमारी दीदियां स्वरोजगार कर रही हैं, आजीविका गतिविधियों से जुड़ी हैं, जो अपने पेमेंट लेती हैं वो दीदियां, तो वो भी उसमें भी QR कोड के माध्यम से ही पेमेंट करती हैं। तो पूर्णतः ये हम लोग डिजिटल राशियां उपलब्ध करा दी जाती है, चाहे RF हो, चाहे CIF हो, CCL हो, और इनको भी आजीविका गतिविधि से जोड़ने का अवसर हमारे द्वारा प्रदान किया जाता है।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण की आधारशिला बन गया है। इसमें औपचारिक ऋण, कौशल और बाजार के अवसरों तक पहुंच का विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सुदूर ग्रामीण अंचलों में गरीब परिवारों को संगठित कर रहा है, उन्हें बैंकों से जोड़ रहा है और आजीविका के स्थायी साधन प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। इस मिशन के अंतर्गत महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ रही हैं, उद्यमिता विकास, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल लेन देन, कौशल विकास और प्रशिक्षणों द्वारा स्वावलंबन को अपना रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह की महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं अजय कांत तिवारी, शाखा प्रबंधक महाराष्ट्र बैंक छिंदवाड़ा।
3: नमस्कार श्रोताओं, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें पूरा एक ग्रुप बनता है जिसमें महिलाओं को जिस भी कार्य के लिए वो चाहती हैं, जैसे कि कुटीर उद्योग हो गया, पशुपालन हो गया, और भी प्रकार के लोन जो ग्राम में और छोटे कस्बों में जो वो कर सकती हैं, जैसे कि आपकी टोकरी बुनना हो गया, इस तरह के कई कार्य जो हो सकते हैं जिसके लिए हम उनको ऋण प्रदान करते हैं। पहले क्या करते हैं कि उनसे एक हमको कुछ दस्तावेज उनसे मांगते हैं, जैसे कि उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है उनका MURLM में, वहां से हमको एक बैंक सखी होती है, बैंक सखी के माध्यम से हमको जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक में जमा होते हैं। उसमें मुख्य रूप से उनका पंजीयन जो हुआ है वो हो गया, उसमें मुख्य रूप से तीन लोग होते हैं, जैसे कि आपका अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गए और कोषाध्यक्ष हो गया। इन सब का हम आधार कार्ड और पैन कार्ड लेते हैं, इसका हम वेरिफिकेशन करते हैं और उसकी मीटिंग का एक हम मजमून लेते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि इस ग्रुप के अंदर कुल कितनी महिलाएं हैं जो कि इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। फिर उसके आधार पर हम जितने भी इनके जो संगठन के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जैसे अध्यक्ष हो गया, आपका सचिव हो गया और कोषाध्यक्ष हो गया, इनके जो ऑफिस इन्होंने यहाँ बताया है वहाँ जाते हैं, वहाँ उसको सत्यापित करते हैं। उसके अलावा इनके घरों का सत्यापन होता है और जहाँ ये मुख्य रूप से अपना रोजगार या जो ये व्यवसाय कर रहे हैं वहां जाकर भी हम इसको वेरीफाई करते हैं। हम जाकर के हर 2-3 महीने के अंतर पर उन जगहों पर जहां हमने पहली बार सत्यापन किया है फिर जाकर के उसको वेरीफाई करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो आपके संगठन की महिलाएं हैं वो कहां कहां कार्य कर रही हैं, और फिर हम वहां वहां जाकर भी उसको सत्यापन करते हैं कि ये यहां पर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे पास बैंक सखी जो महिलाएं हैं जो कि इन सब का हमें दस्तावेज देती हैं, जो इनके बारे में हमें बताती हैं कि ऐसे ऐसे ये आ रहे हैं वो हैं, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी महिलाएं हैं जो ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी भारत सरकार की जो ये स्कीम है इसके थ्रू लाभान्वित हों और अपना उन्नयन करें।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के समेकित विकास और जीवन स्तर में गुणात्मक सुधारों के लिए स्वयं सहायता समूह के गठन के अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर रहा है। स्थायी आजीविका के अवसरों ने ग्रामीण भारत की महिलाओं को नई दिशा दी है। इससे गाँव में निवास करने वाली महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन अब स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए इस मिशन ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध किया है बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और गौरव को भी एक नई पहचान दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कार्य करने वाली इन हितग्राही महिलाओं से हमने बात की और इनसे इनके अनुभवों को जाना।
4: रजनी डहरिया भाना देई, शारदा स्व सहायता समूह। ये अपना जो NRLM है, आजीविका मिशन जनपद, वहाँ से जुड़ी हूँ। हमारे ये श्री कपिल पटवा सर हैं, उन्होंने प्रोत्साहित किया है। पूरा समर सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ का भी। 12-15-10 दीदियों को जोड़ना है तो पहले यानी फील्ड वर्क की मैंने कि अपन को समूह में जोड़ना है करके, पहले पूछ रही थी कि दीदिया क्या फायदा मिलेगा, तो मेरी आपको फायदा मिलेगा, आप इसमें जुड़िए, 100-100 रुपए आप लोग को हर महीने जमा करना पड़ेगा और 3 महीने के बाद फिर अपन को RF की राशि, CIF की राशि और 6 महीने बाद अपना बैंक से लोन हो जाएगा और बैंक में खाता खुलेगा इसका समूह का। सब दीदियों ने लिए हैं तो कुछ कुछ में लगाई है दीदिया लोग ने, मैंने भी अपना जो रोजगार है उसमें लगा ली पैसा भी। दीदियों को जरूरत है कृषि में, पशुपालन में, दुकान में, उसमें व्यय करती है दीदिया लोग। फायदा तो काफी, आर्थिक स्थिति जो थी ना वो सुधरी। जैसे अपन जिसे काम कर रहे हैं, पहले अपन को ये इसका लाभ नहीं मिलता देने पैसे, जैसे पेमेंट काम कर रहे तो इसका अपन को राशि मिलने लगी है। दीदिया काम कर रही है, पढ़ी लिखी जो सभी को राशि मिलने लगी और अपने जो सर आए हैं, सर के आने से काफी परिवर्तन हुआ है अपने आजीविका मिशन में। पहले नहीं था, बकायदा राशि मिल रही है उनको, तो दीदिया लोग आत्मनिर्भर बन गई है, सक्षम है, अपने पैरों पे खड़ी है। जब दीदिया लोग जुड़ती है तो प्रोत्साहित होती है जुड़ने के लिए। काफी दीदिया लोग जुड़ गई और बहुत सारे नए समूह बन रहे हैं, नदी में भी गाँव का विकास होगा।
5: जी मेरा नाम संगीता यादव है, ग्राम कुंडा, तहसील चौरी, जिला छिंदवाड़ा। हम लोग दुकान चलाते हैं, जनरल स्टोर। स्व सहायता से समूह से जुड़े हैं तो उससे लोन लेके उसको बढ़ा रहे हैं। हमारे स्व सहायता समूह का नाम सागर, हम 11 बहने हैं। स्व सहायता समूह बनाने के लिए हमारी नोडल मैम है एक अनिमा मिंज, 2018 में आई हुई थी यहाँ गाँव में, फील्ड करने आई तो हमसे संपर्क हुआ उनका कि ऐसा ऐसा है, आप जुड़ो, समूह खुलाओ खाता। तो फिर हम लोग ने खुलाए तो हमको काफी बेनिफिट मिला था, हम हर साल उससे फिर लोन लेते जा रहे हैं। हमारी इसमें ज्यादा बहने जो है दुकानें वाली हैं, किसी का बुक डिपो है, किसी का फिर जनरल स्टोर है, किसी किराना दुकान है, एक दो जो है पान ठेला वाली भी है हमारी। इसमें सभी को जरूरत पड़ती तो लेते हैं, हर साल ले रहे हैं हम लोग। समूह बनाने में कठिनाई नहीं आती। जैसे अपने लोन ले लिए, अपन अध्यक्ष सचिव है तो अपने सदस्य को अपन ही कंट्रोल करके चलना पड़ता है कि भाई दो दिन पहले उनको बताओ कि अपनी किस्त आ गई है। दिक्कत कुछ नहीं है, बस सदस्य अच्छे रहना चाहिए, प्रोग्रेस भी हो रहा, आपस में चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे मुद्रा लोन आया, अभी इसको चाहिए तो वो अलग से ले सकता अपना सीसीएल लोन के बावजूद भी। समूह से जुड़े, समूह से अपन लेन देन करें, फिर अपना अच्छा रोल काल रहा तो अपन को लोन मिलता है हर साल, अपना बिजनेस में प्रोग्रेस करें।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए द्वार खोलने और विकास को एक नई गति देने का सुनियोजित प्रयास है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशिक्षण से रोजगार प्राप्ति तक की यात्रा ने ग्रामीण महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है, इससे उन्हें एक नया आत्मविश्वास मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आज ग्रामीण समुदायों में समावेशी विकास और बेहतर जीवन स्तर का एक सशक्त वाहक बन गया है। तो आइए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर रजनीश शर्मा, संपादन अनिल सरोडिया का था, प्रस्तुति सहयोग गीतांजलि गीत और प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की और संयोजन था अल्पना गोलेंद्र का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दगर विकास की, प्रस्तुति थी आकाशवाणी छिंदवाड़ा की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनाते हैं पहला गीत फिल्म तराना से। ये गीत लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीत है राम लक्ष्मण का, स्वर है शैलेंद्र के।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे आर टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील टू रन द हाउस, इज देयर रिस्पॉन्स।

0: But in our house, it has become a regular practice to disturb the house and not allow the house to run.
1: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगू की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
2: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
3: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाए। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
5: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लुटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160 kilometre long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. U.S. military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, host England set 388-run target for India in the third and final ODI at Lord's. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting in Parliament House and Nexi. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of the Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
7: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
6: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party.
8: Today the entire opposition, all parties have all walked out all party meeting in protest because NCPI, which is an unrecognized party, these so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker.
6: Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. Ambassador to Moldova and Romania, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, has said that President Murmu's visit to the two countries will be historic. Talking to Prasar Bharati, Dr. Mohapatra said India and Moldova enjoy warm and friendly relations and the visit would mark a significant and historic milestone and elevate bilateral ties to a broad-based partnership.
2: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova. Similarly, when we talk about Romania, and it would be basically in the more than 3 decades. So given that importance, it is historic. Both the countries and the leaders with the leadership, we would be very much happy to review our existing bilateral relationship. We would be also identifying the key areas. In fact, Honorable President is accompanied by

0: जफर जी
1: आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहां पर मौजूद हैं समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन-कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए
2: देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है हमारा कोशिश रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा जनता का फायदा हो ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल महिलाओं का एस्पिरेशन उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था लेकिन अब लोगों ने अफसोस जाहिर किया अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है देश के हित में काम होता है समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है तो ऐसे लोगों ने बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी हैं अपनी पार्टियां बना ली हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड हैं कि लोगों का समर्थन अपोजिशन बेंच का समर्थन सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम इस तरह के लेजिस्लेशन को एक कानून पास करके बिल को पास करके कानून बना सकेंगे उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है या स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को उसको डिटेल चर्चा करें और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं मुझे लगता है कि बिजनेस कंडक्ट करना देश की जनता के लिए टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को अपोजिशन की पार्टियों को देश को प्राथमिकता दीजिए देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता

0: ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए कि ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ना उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इससे उनसे भी अलग हुए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर पे उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, न के परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करें।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस की नहीं, पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि पैथलॉन की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है, नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, उन्होंने नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसी मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो, आपने देखा होगा विकास की जो बात करें कितना भ्रष्टाचार किया लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसके बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, MP MLA को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और SIR का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों पर रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, MSP के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम ये समझते हैं, और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
3: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार खेल रहे थे उसको और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं, वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो

0: गणतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
2: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहाँ पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहाँ से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहाँ से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की। 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे E20 भरवाना चाहे उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे, यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
3: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन में परसेंट बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके, जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, पर उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे और जो लोग थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरे तरह से नाकारे जाएंगे, जो बचे के चले गए वो भी नाकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है जो भी इसमें चेंजेस के बाद है वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
4: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहा है वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहा है जो 33% था वो राजनीति है क्या? क्या हम अगर ईरान के साथ अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है राजनीतिक मसले है उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए डायलॉग से नहीं किया जाए तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है। और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं हुआ और SIT आपने गठन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है पूरा देश जो है उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ है जो दूर दर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मानसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
0: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था निर्यात होता था उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था वो 0 अमेरिका का सामान आने पे होगा तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको भुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
1: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे उस समय बिल पास नहीं होने दिया फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए 33 क्यों आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए लेकिन ये नहीं चाहते ये महिला विरोधी पार्टी है इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में दूसरी बात भाई हमारी जो है मेजॉरिटी नहीं रही हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है ईडी पार्टी कर रही है चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है ईडी पार्टी सरकार कर रही है ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है ये लोकतंत्र के हत्यारे ये संविधान के हत्यारे जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता ये तो किसी के सगे नहीं है विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजॉरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका ये इस बात को भली भांति जानते हैं 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए किसान इनसे परेशान है जवान इनसे परेशान है युवा इनसे परेशान है छात्र इनसे परेशान है व्यापारी इनसे परेशान है तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग
1: जफर साहब आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है
3: देखिए अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है जब से ईरान इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन उसमें मेंटेन है एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखे हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसके वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे या डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है महंगाई पे असर आ जाता है बट ये सब टेम्पररी है परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है भारत की नीतियां मजबूत है पॉलिसी मजबूत है और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश आज देखें जो रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती हमने आम लोगों के लिए क्या और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हैं चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो पेंशनर्स हो सबके लिए हम स्कीम लेके आए सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
4: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार सेल आउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग में, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक बहस हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला है। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
2: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, ईट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पे जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है, जफर साहब अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मानसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आप क्या संदेश होगा?
3: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टी है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हैं और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
5: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया
6: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद
7: ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र 102 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 10 बजे हैं श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि के 11 बजने वाले हैं।
1: साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI